आगे आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

देखिए जिंदगी की रफ्तार मेरे ख्याल से हफ्ते के ये दिन पर सबसे ज्यादा महसूस होती है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और थर्सडे का दिन सुबह उठते ही आपको ऐसा लगा कि अरे अलार्म चेक किया और फिर ऐसा लगा आज थर्सडे है, आज वेडनेसडे। पूछा अपने घर वालों को क्या है आज, होता है ना ऐसा, मतलब नॉट एवरी डे बट ऐसा कभी तो मोमेंट आता है कि क्या आज सही में थर्सडे। अरे यार कितना फास्ट गया ना ये हफ्ता। अरे यार दिस हैपेंस विद मेनी ऑफ अस एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज, कि जब आपके पास ना बहुत सारा काम होता है और जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ रहते हैं और बस अपने जो रूटीन में रहते हो ना, आपके दिन कहाँ चले जाते हैं ना आपको पता नहीं चलता। इसीलिए मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि बिजी रहते हैं हम और अक्सर शिकायत होती है कि यार बहुत बिजी है, यार बहुत काम है और ये वो चीज़ें हों, और मेरे ख्याल से ना शिकायत करना छोड़ दीजिए क्योंकि बिजी रहना बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन आपके पास कोई काम नहीं होता है या आप वो काम करने के लायक नहीं होते हो, भले ही वो हेल्थ की वजह से हो या कोई और की वजह से हो, तब आपको रियलाइज होता है कि यार वो दिन अच्छे थे जब हम कोई काम में मसरूफ रहा करते थे। तो बस यही उम्मीद के साथ कि बस वीकेंड आपका आराम करते हुए जाए और आपका वीकडे बिल्कुल बिजी जाए और आप खुश रहें। आफरीन के साथ में शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: Pepepermeci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vie de la burga.
2: Merci, burga.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने, मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप
4: ही
3: रखो यार, आप तो मतलब हमें रख लो, ये बीच
4: में यार। ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
3: बनाया ठीक है ना
4: भैया,
3: पैसे
4: भाड़ में गए। आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: अभिजीत की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची और ब्यूटीफुल 90s का एक अच्छा खासा नॉस्टैल्जिया के साथ में हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, वीकेंड आ गया है फाइनली। वेल, मुझे ऐसा लगा ना कि यार ये वाला हफ्ता ना थोड़ा सा लंबा गुजरा है। मैं अक्सर आकर कहती हूँ कि नहीं यार, ये तो हफ्ता ऐसे चुटकी बजा कर निकल गया, लेकिन ऑनेस्टली आई वॉज वेटिंग फॉर वीकेंड सिंस ट्यूजडे या प्रोबेबली मंडे। हाँ जी, और बस वीकेंड क्योंकि आ ही गया है, आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड एक अच्छी बात ये भी है कि दिस वीकेंड बी आई थिंक सो वी ऑल शुड बी स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम विद किड्स, क्योंकि उसके बाद बच्चों की स्कूल्स नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाली है। प्रोबेबली ये वीकेंड बहुत सारे लोगों का बैक टू स्कूल यानी स्कूल वापस जाने की तैयारियों में रहेगा। वही बैग्स खरीदना, लंच बॉक्स, बॉटल एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑफकोर्स सो मेनी इवेंट्स अक्रॉस कतर फॉर बैक टू स्कूल, जैसे मिर्ची का ही इवेंट आज होने वाला है। वेल, उसके बारे में बात तो करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन जरा अब मैं आ गई हूं तो सबसे पहले काम मेरा कर लूं, वो है वेदर के बारे में आपको अपडेट दे दूं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, वेदर ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रहेगा आज तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब हर रोज 44 वगैरह होता है, चलो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। मिनिमम जो है 32 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। ह्यूमिडिटी जो है वो कल से ज़्यादा होने वाली है। ओ माय गॉड, 76% पर अभी फिलहाल ह्यूमिडिटी है, और कल बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्मी है, शायद टेम्परेचर्स की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से। लेकिन जो भी है भाई, हाइड्रेशन का गेम जो है वो एकदम लेवल अप रखिएगा, बिल्कुल हाइड्रेट रखिएगा अपने आप को, करते रहिएगा अपने आप को। और इसी के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाज में, और मिर्ची शॉट।

वेल, अरिजीत सिंह की मेलोडियस आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी डंकी फीचरिंग वन एंड ओनली आवर किंग खान। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि भाई अगले हफ्ते से कतर का माहौल जो है वो बदलने वाला है बिल्कुल। कुछ घरों में सुबह के जो अलार्म्स है और भी ज्यादा जल्दी लगने वाले हैं क्योंकि बच्चों की स्कूल शुरू होने वाली है। एंड द मॉर्निंग कियोस, ओ माय गॉड, जल्दी उठो, लेट हो जाएगा, बस आ जाएगी या फिर ड्रॉप करना है, ट्रैफिक ज्यादा लग जाएगा, टिफिन कहाँ है तुम्हारा, लिया कि नहीं लिया, अरे नाश्ता तो पहले खत्म करो। ओ माय गॉड, so many voices from different home and it's gonna be a busy kind of morning. लेकिन उससे पहले बच्चों का ये जो back to school का सिलसिला है हर जगह जो चल रहा है, कहीं malls में offer है, कहीं कोई events है, ऐसे में हमारा मिर्ची तो है वो हमेशा लेकर आता है बच्चों के लिए कोई ना कोई activity। जैसे आज मिर्ची का back to school event होने वाला है और अगर आपने register किया है already then see you there, और अगर आपने register नहीं किया है तो sorry, क्योंकि यार मिर्ची के जब भी इवेंट्स आते हैं ना तो हमेशा मैं कहती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया के पेज के साथ में ना जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जैसे हमारा जो सोशल मीडिया पेज है इंस्टाग्राम का, दैट इज मिर्ची वन कतर, अगली बार के लिए ये आपको बता के रख रही हूँ ताकि आपसे कोई इवेंट हमारा मिस ना हो। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची केसरिया। और अरिजीत सिंह का जो सिलसिला यहाँ पर चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे यहीं पर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: आई हैव फ्यू पीपल, यस, आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एटलीस्ट टू पीपल तो आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
3: दे नो हु दे आर,
4: टू पीपल They will die for me. Yeah, I'm blessed. I'm blessed.
2: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, because I will also, yeah. You're listening to Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.

देखिए वैसे तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पता होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या है ना, रिमाइंडर ऑल्सो हेल्प्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक फिर से वार्निंग लेकर आई है फॉर द पब्लिक जो ड्राइव कर रही है, ठीक है। जो ड्राइव करने वाले लोग हैं, अगर आप विदाउट लाइसेंस ड्राइव करते हैं, देन ऑफकोर्स इट्स ट्रैफिक वायलेशन एंड इट इज़ पनिशेबल बाई इम्प्रिजनमेंट और रियली हैवी फाइन्स। देखिए मिनिस्ट्री ये कहता है कि ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस इज अ ट्रैफिक वायलेशन दैट पोजेस अ रिस्क टू द सेफ्टी ऑफ ऑल रोड यूजर्स, ऑब्वियसली। तो ठीक है, इस रूल को कंप्लाई करना चाहिए, इस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में हमेशा चलना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 ऑफ द ट्रैफिक लॉ, जो भी इसे नहीं मानता है या फिर जो भी इस रूल को तोड़ता है शॉल बी सेंटेंस टू आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 month एंड नॉट मोर देन 3 years, और जो फाइन लगेगी बिटवीन 10,000 से 50,000 का 3 रियाल तक फाइन लग सकती है। सो वैसे देखिए अक्सर क्या होता है ना कि कभी कभार हम लाइसेंस जो है वो कैरी करना भूल जाते हैं, कभी लेडीज के केस में ऐसा होता है कि पर्स कभी चेंज कर लिया तो लाइसेंस नहीं कैरी कर पाते हैं, सो स्टफ लाइक दैट। तो आपने जो है ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है जो ड्राइव करते हैं, बिल्कुल सेफ्टी इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, बाकी सब बाद में है ना। मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Mornings
0: with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
2: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा होने वाला है 7 बजे की तरफ। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और अरिजीत सिंह की आवाज में दिन की खूबसूरत शुरुआत करते हैं ना आवारापन 2 से ये गाना राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

हेलो हेलो, आप वकरा से हो तो वकरा वालों, एक्सक्यूजेस अब काम नहीं आएंगे। हाँ जी, वो एक्सक्यूज होते हैं ना अक्सर कि यार हाँ वॉकिंग कर रही है ना, कल से करेंगे, अरे बस कुछ दिन बाद से करेंगे, ये सब अब काम नहीं आएंगे, बस वेदर थोड़ा सा मेहरबान हो जाए स्पेशली। क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अलवकरा या वो केयर के साइड में रहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने 3 ब्रांड न्यू पब्लिक पार्क्स ओपन किए हैं। एक है अल मशमूम, दूसरा है अल खुजामा इन अलवकरा, और एक है अल अराक इन अल वो केयर। और ये सिर्फ ग्रीन ग्रास, बेंच और फोटो खींच वाले पार्क्स नहीं है, यू हैव वॉकिंग पाथ्स, डेडिकेटेड जॉगिंग ट्रैक्स, किड्स प्ले एरिया, आउटडोर फिटनेस जोन्स, सीटिंग्स और रेस्टरूम्स, सब कुछ है। बेसिकली बच्चों का प्ले टाइम, पेरेंट्स की वॉक और आपका मंडे से फिटनेस, सब एक ही एड्रेस पे। वेल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये आता है कि इनके नाम भी रैंडम नहीं है। मशमूम, खुजामा और अरक लोकल एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड प्लांट्स के नाम हैं। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कतरी आइडेंटिटी बिल्ट इनटू दीज स्पेसेस एज वेल। एंड अगर बिगर पिक्चर देखा जाए ना, दिस इज पार्ट ऑफ कतर्स पुश टूवर्ड्स मोर एक्सेसिबल नेबरहुड ग्रीन स्पेसेस एंड इट्स मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी स्ट्रेटेजी 2024-2030। सो वकरा वुकेयर वालों, सेव द नेम्स, वेदर बेटर होते ही वीकेंड आउटिंग का एक और ऑप्शन ऑफिशियली आपका रेडी हो ही गया है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nici.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. Na vietva la murga. Nici, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Kon?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: स्थाई स्थाई स्थाई मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे
3: हैं. हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: रेडी
7: रेडी
6: टू लर्न.
7: यस
6: टू प्ले.
7: एब्सोल्युटली
6: टू ग्रो
7: विद मेज़राती.
8: This cool season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
7: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
8: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
10: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
11: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
10: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: देखिए बैक टू स्कूल एक्टिवेशंस तो आपको कतर में ऑलमोस्ट हर मॉल में नजर आ रहे हैं और तकरीबन सारे इस वीकेंड तक खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन एक जगह है जहां सबसे इम्पोर्टेंट बैक टू स्कूल एक्टिविटी अब शुरू होनी बाकी है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड 30th अगस्त यानी ये संडे से PHCC पब्लिक स्कूल्स और किंडरगार्टन में हेल्दी बॉडीज बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशंस कैंपेन शुरू कर रहा है। अब पेरेंट्स इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या है, सिर्फ बच्चों को एक लेक्चर देकर हेल्दी खाओ फोन कम चलाओ ये नहीं होता। स्कूल्स में क्लासरूम एक्टिविटीज वर्कशॉप्स और हेल्थ सेशंस होंगे, प्लस स्टूडेंट्स को वीकली ट्रैकिंग कार्ड्स और सेल्फ असेसमेंट टूल्स दिए जाएंगे जहां वो अपनी स्लीप स्क्रीन टाइम वाटर इंटेक न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी जैसे डेली हैबिट्स को मॉनिटर करेंगे। और कैंपेन स्कूल गेट पर खत्म नहीं होता, पेरेंट्स टीचर्स और स्कूल नर्सेस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि जो हैबिट स्कूल में सिखाई जा रही है वो घर पर कंटिन्यू रहे। सो अगर आपका बच्चा पब्लिक स्कूल में है, इस कैंपेन को सिर्फ एक स्कूल एक्टिविटी मत समझना, घर पर भी उस ट्रैकिंग और हेल्दी रूटीन को एनकरेज करिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्दी हैबिट्स का बेस्ट सिलेबस वो है जो क्लासरूम से घर तक फॉलो हो। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही है।

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कारमेल ग्रुप.
1: Check.

0: वेल, सुकृति कक्कर और सिद्धार्थ महादेवन की आवाज यानी शंकर महादेवन के सुपुत्र ये गाना गा रहे हैं। अच्छा, एक गाने की मजे की बात बताती हूँ। दिल धड़कने दो का ये गाना है, रणवीर सिंह है इसमें, अनुष्का शर्मा है, और अगर आपने देखा रहेगा कि ये एक रिहर्सल रूम में ये लोग डांस कर रहे होते हैं। आई मीन दैट्स हाउ द वीडियो इज, एंड यू नो व्हाट, इसकी कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, बस गाना लगा दिया और कह दिया कि बस इट्स आफ्टर ऑल रणवीर सिंह। एंड रणवीर सिंह में इतनी सारी एनर्जी होती है, वी ऑल नो दैट, यू ऑल विटनेस दैट इन हिज फिल्म्स। बस वो बस शुरू हो गए एंड अनुष्का शर्मा जस्ट फॉलोड हिम, एंड दैट्स हाउ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज कोरियोग्राफ्ड, एंड आई जस्ट लव द वाइब ऑफ दिस सॉन्ग। चलिए वाइब की बात करते हैं, तो आपकी और मेरी वाइब तो काफ़ी मैच होती है, और इस वक्त पर ज़्यादा होती है क्योंकि हम और आप मिलकर खेलते हैं मेरा फेवरेट वाला गेम, जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन सुनाने वाली हूँ और मूवी पहचानो कौन सी है ये।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: और एक बात और सुन ले मेरे यार, माँ कवि पोपटलाल जी कह गए कि लाइफ में तीन चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। एक गई, दूसरी आती है, समझा?
0: समझे, फिर से सुनाओ। देखो आवाज तो आपने पहचान ली है, एंड नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट। मैं बता देती हूँ, आमिर खान की आवाज है, ठीक है, इसमें क्या है, लेकिन मूवी कौन सी ये आपने बतानी है। 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर, और हल्का सा हिंट भी दे देती हूँ चलो आप लोगों को, कि ये मूवी दो दोस्तों की है जिसे दो लड़कियों से प्यार हो जाता है, ठीक है, अलग अलग लड़कियां। सिंपल यार, ऑफ द स्ट्राइक के शान कुणाल की आवाज में ये गाना, ब्रिंग द राइट काइंड ऑफ वीकेंड एनर्जी। रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ाओ और पूरी तरह से एंजॉय करो ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Karisma Kapoor.
2: Who's most likely to sleep with the lights on because they're so scared to death?
3: I have to answer this?
2: No, I'm asking just like that. Karishma, ma'am, ek ka to jawab de do.
3: Probably Kareena.
2: Honey.
3: Out of both of us.
1: Bebo ko dekh ke lagta nahi hai wo darti hongi. Because she's always in safe hands. If you know what I mean. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Hollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: बिल ध्वनि भानुशाली की प्यारी सी और मीठी सी आवाज में ये गाना आपने सुना, साथ देते हुए निखिल डिसूजा, राइट हियर ऑन मिर्ची। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आज की सुबह ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगी भूमाएँ बंधुओं के, क्योंकि वीकेंड है ना, तो बस एक अलग सा ना सुकून सा होता है दिल में कि बस हाँ यार आज का दिन किसी तरह निकल जाए और बस जो बची हुई नींद है जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं हफ्ते में वो पूरी कर ले, थोड़ी सी बचे हुए काम कंप्लीट कर ले। लेकिन यार क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड जो है इतना रिलैक्स्ड है, मैंने सोचा आज का चलो ठीक है सवाल ईजी पीजी दे ही देती हूँ, ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं चाहिए। लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट हम यहाँ खेल रहे हैं और आज का सीन सुनते हैं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: और एक बात और सुन ले मेरे यार, माँ कवि पोपटलाल जी कह गए कि लाइफ में तीन चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस ट्रेन और छोकरी, एक गई दूसरी आती है।
0: Well, जहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये देखो ये आमिर खान की आवाज है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया कि ये तो अंदाज अपना अपना है, लेकिन नो बॉस ये अंदाज अपना अपना थोड़ी ना है, ये कौन सी है सुनते हैं।
3: नेम ऑफ द मूवी इज इश, डायरेक्टेड बाय इंदर कुमार।
0: बिल्कुल सही।
3: आमिर खान, अजय देवगन, दिलीप साहिल, काजोल, जूही चावला, जॉनी लीवर।
0: वाह वाह वाह वाह, आपने तो सब कुछ बता दिया। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच।
4: मेरा नाम अजय पाटिल
0: है।
4: ये इश्क मूवी का डायलॉग है जिसमें अजय देवगन और आमिर खान है।
0: दैट्स राइट।
5: गुड मॉर्निंग अफरीन।
0: गुड मॉर्निंग शारिक।
5: दिस वाज फ्रॉम मूवी इश्क, आमिर खान एंड अजय देवगन। इट वाज एन अमेजिंग मूवी।
0: दैट्स राइट।
5: हैव अ गुड डे अहेड। टेक केयर।
0: You too have a great day and a great weekend. और जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया है, जैसे मोहम्मद परवेज, इमरान अहमद, सैयद नोमान, इंजमाम, साहिल, चार्ली, सुलेमान, मोहम्मद यूसुफ खान, त्रिशा, मोहम्मद अमर और किरमानी, इन सभी ने बिल्कुल सही बताया कि दैट दिस इज आफरीन फ्रॉम इश्क मूवी। और इश्क मूवी में आपको पता है अमिताभ बच्चन भी होने वाले थे एंड ही वॉज गोन प्ले अ वेरी ह्यूज लाइक बिग रोल। इसीलिए इंद्र कुमार जो थे इसके डायरेक्टर, ऑलरेडी सुधीर भोसले की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड कर लिया था, मिस्टर लोवा लोवा याद है आपको, एंड देन कुछ तो उनमें डिफरेंसेस हुए एंड अमिताभ बच्चन कुड नॉट प्ले दैट रोल, इसीलिए जॉनी लीवर को लिया। लेकिन लिया तो लिया क्या, अमिताभ का एसेंस जो है वो बरकरार रखा। वेर ही वॉज प्लेइंग जॉनी लीवर वॉज प्लेइंग इन दिस सॉन्ग, अमिताभ के प्रीवियस मूवीज के सारे उन्होंने अवतार्स और सारे कपड़े पहने थे, कभी शहनशाह बनकर आते थे, कभी कोई, कभी कुछ, कभी डॉन, कभी कूली। याद आया अब आपको कुछ? तो चलिए इश्क मूवी का गाना सुनते हैं, कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति, लाइक द बेस्ट फोर्स, 90s के बेस्ट फोर्स इन दिस वन सॉन्ग। माइक से दिल तक आफ्टरीन के साथ बने रहिएगा। वन मिनट, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

0: जसलीन रॉयल की आवाज में ये गाना थर्सडे को तो बहुत अच्छा लगता है यार। लव यू जिंदगी, जब आप पूरा हफ्ता काम करते हो और आपके लिए वीकेंड ऐसा परोसा जाता है कि एंजॉय करो, रिलैक्स करो और अपनी मर्जी का करो, तो बस उस चीज पर ये गाना एब्सोल्युटली परफेक्ट बैठता है। वेल, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:05 की तरफ और आफरीन जुड़ी है आपके साथ। अगला गाना ना बहुत ही प्यारा 90s नॉस्टैल्जिक गाना है, एमजी श्रीकुमार अनुराधा पौडवाल की आवाज में। इट इज किस्सा हम लिखेंगे, और एक बहुत ही मजे का किस्सा, कोई गाने से जुड़ा हुआ और उसकी कोरियोग्राफी से जुड़ा हुआ, मैं लेकर आ रही हूँ राइट ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

कभी कभी ना किसी गाने को आइकॉनिक बनाने के लिए सिग्नेचर हुक स्टेप की जरूरत ही नहीं होती है, इमोशन ही उसी कोरियोग्राफी बन जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और लगान का ये गाना तो याद होगा आपको, एक पूरा गांव आसमां की तरफ देखकर बारिश का इंतजार कर रहा होता है। और अगर आप गाना दोबारा देखेंगे ना, एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर नोटिस करना, वो ये है कि यहाँ सब लोग एक जैसे स्टेप्स तो बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर सब खुशी में उछल रहा है, कोई आसमान की तरफ देख रहा है, कोई अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुली कियोटिक, ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस, बट दैट कियोस वॉज एक्चुअली कोरियोग्राफ्ड एंड कोरियोग्राफी वॉज डन बाय राजू खान, जो लेजेंडरी सरोज खान के बेटे हैं। उन्होंने घनन घनन को कोरियोग्राफ किया था और इसी गाने के लिए उन्हें मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी। और बिहाइंड द सीन्स कहानी और भी कमाल की है। राजू खान ने बताया कि गाना शूट करना इतना ट्रिकी था कि उनके पास रफली 45 मिनट्स का सनसेट विंडो होता था ताकि हार्श शेडोज ना दिखे और स्क्रीन पर क्लाउडी बारिश आने वाला मूड क्रिएट हो सके। तो ये गाना शूट करने में अराउंड 8 डेज लगे। और गाने में क्योंकि इतने सारे लोग थे और इतने सारे लिप सिंकिंग करनी थी, तो आशुतोष गोवारिकर ने कहा कि भाई वो हर रोज पूरी की पूरी टीम को लेकर बैठते थे गाने की शूटिंग के पहले और कैरियोके होता था। क्या मजे का माहौल बनता था। वेल दैट्स व्हाई आई थिंक घनन घनन इज नॉट रियली अ डांस नंबर इन द कन्वेंशनल सेंस, इट्स अ फीलिंग दैट हैपेंस टू बी कोरियोग्राफ्ड। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। कमिंग अप नेक्स्ट द सेम ट्रैक राइट अराउंड मिर्ची, उदित नारायण और कयाग्निक सुखी पाजी की आवाज में, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La virtua la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासे थे, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
4: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
3: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे तू मजे ले रहा फोन करके?
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा, फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
8: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
9: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
10: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
9: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

Well, सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना क्लिंटन सेरेजो का साथ और मूवी आपको याद है? हाँ, मूवी का हीरो जरूर याद होगा, इमरान हाशमी की ये मूवी थी। हुमा कुरैशी भी थी इसमें और कालकी कुलचन भी थी, बट दिस मूवी वॉज एक थी डायन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्रीन को आप सुन रहे हो राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और हम आ गए हैं हमारे वीकेंड की तरफ, और वीकेंड पर अक्सर लोग ना अपने पेंडिंग काम कर लेते हैं, एंड दिस वीकेंड हैज टू बी स्पेशल, या फिर ये वीकेंड टफ है कि भाई ये वीकेंड ऐसा मंथ एंड पे आ गया है कि बाहर जाके शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेविंग्स की हुई है उसको मत उड़ाइए भाई, उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर लिए, अच्छे से उसका आईपे का एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करके उसे भेज दीजिए। देखिए तो आज का जो एक्सचेंज रेट है वो कह रहा है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.17, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.19, बांग्लादेशी टाका जो है इट इज एट 33.79, श्रीलंकन रुपीज ऑन द अदर हैंड इज एट 90.12 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.76। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला एज आई ऑलवेज सी 89.6 मिर्ची 1 पर माइक सिंबल तक आफरीन के साथ।

नमस्ते लंदन का ये गाना जुबिन गर्ग की आवाज अलीशा चुनई का साथ एंड द क्यूट लुकिंग कैटरीना इन दिस सॉन्ग एंजॉय इट ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और ले चलती हूँ आपको उस दुनिया में जहाँ पर मिस्ट्री है, चैलेंज है, और आपने वो चैलेंज को बिल्कुल पार करना है। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। आज के मेरे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से तीन एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम निकले हैं, ठीक है, मतलब ये एक मूवी का स्टार कास्ट है एंड आपने गेस करना है आखिर ये मूवी है कौन सी। आई थिंक सो दिस कुड बी ईजियर फॉर यू एंड कुड बी नॉट ऑल्सो। सो माई हिंट्स फॉर यू आर लाइक दिस। पहले स्टार कास्ट जो है ऋतिक रोशन, दूसरे है करीना कपूर, तीसरा है अमरीश पुरी, सोचो सोचो सोचो, और फिर लास्ट है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आप गेस कर ही पाओगे, वो है जैकी श्रॉफ। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से इधर आके बताइए क्या आफरीन आखिर कौन सी मूवी की बात कर रही है जहाँ पर ऋतिक रोशन है, करीना कपूर है, अमरीश पुरी भी है एंड वी ऑल्सो हैव जैकी श्रॉफ। समझ में आया? चलिए फिर आपके जवाब का इंतजार करती हूँ मैं और आप अगले गाने के साथ इंजॉय कीजिएगा नकाश अजीज और अंतरा मित्र की आवाज में। कुछ बोलो यार, ये गाने की वाइब बहुत मजे की है और आई लाइक शाहिद कपूर का डांस भी इसमें। साड़ी

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: दर्शन रावल कविता गांधी की आवाज में ये गाना राइट हियर फ्रॉम द मूवी इश्क विश्क रीबाउंड। और आ गई है आफरीन आपके साथ। जी सवाल का जवाब लेकर आई हूँ मैं। यस मिस्ट्री बॉक्स मैंने खोला, उसमें से तीन से चार स्टारकास्ट के नाम निकले और आपने गेस करना था कि ये कौन है। कौन सी मूवी है गेस करना था, जहां पर ऋतिक रोशन है, करीना कपूर है, अमरीश पुरी है और जैकी श्रॉफ भी है। एंड आई थिंक सो दिस गॉट वेरी इजी फॉर यू। जैसे ही मैंने जैकी श्रॉफ कह दिया ना, ये इजी हो गया, कि अदरवाइज ऋतिक और करीना की तो काफ़ी सारी मूवीज आई है, बट विद जैकी श्रॉफ ये एक ही मूवी है। और वो कौन सी है, लेट्स हियर इट फ्रॉम आवर लिसनर।
1: Hi, Afreen. Good morning.
0: Good morning. हाँ जी.
1: The movie name is यादें.
0: Okay.
1: Thanks and have a lovely weekend.
0: You too have a great weekend, Princeton. और हर रोज की तरह बिल्कुल सही जवाब देते हुए Princeton, and then I have few others whose messages, हर रोज की तरह ताहिर का मैसेज आया है, मोहम्मद सिराज का मैसेज है, then I have सलीम who called us, then कुवर also send a message. कुवर, your voice message for some reason I couldn't open it, and yes, it is indeed यादें। वो जमाना था जहाँ पर ऋतिक एंड करीना काफ़ी सारी मूवीज करते थे, बट इनकी मूवीज जो है केतरी जी के अलावा कोई मूवी इनकी पॉपुलर हिट बॉक्स ऑफिस में कमाल की नहीं। एंड देन आफ्टर अ पॉइंट दे वर लाइक नहीं, अब हमने कभी भी एक साथ कोई मूवी करनी ही नहीं चाहिए। हालांकि मुझे इनकी जोड़ी ना, इनका पैर बहुत ही खूबसूरत लगता था। विद दिस यादें का वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, इसमें जो लोगों ने गाया है ना, आई लव ऑल ऑफ देम, यानी आशा ताई, उदित नारायण एंड सुखी पाजी, अनमिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफ्टरनून जुड़ गई है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है एग्जैक्टली सुबह के 9 बजे की तरफ। अगला गाना सुभोष शर्मा की आवाज, आवारा पंटू का ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: इन एसोसिएशन विद

0: देखो बॉस, वीकेंड आ रहा है तो सवाल आपसे ये है कि बाहर के प्लान है या फिर घर में काउच के साथ में दोस्ती करनी है? देखो, अगर आपने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो काउच की दोस्ती के साथ साथ टीवी भी आपके साथ में बेस्ट फ्रेंड बन ही जाता है। वेल, वीकेंड वॉच लिस्ट में काफी वैरायटी आई है।
1: भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल, नया ऐसा है ना, 28 अगस्त यानी 28 अगस्त को Z5 पर आ रहा है बंदर। अनुराग कश्यप डायरेक्शन, बॉबी देओल है इसमें, सानिया मल्होत्रा है, सबा आजाद है एंड स्टोरी काफी अनकंफर्टेबल टेरिटरी में जाती है क्योंकि एक फेडिंग टीवी स्टार पर सीरियस एक्यूजेशन लगता है और फिर कोर्ट से पहले ही मीडिया और पब्लिक ओपिनियन अपना वर्डिक्ट देना शुरू कर देते हैं। वेल, इट्स डार्क, इंटेंस कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग थ्रिलर। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन मोड आकर आपका है। देन प्राइम वीडियो पर बबीता सिंह रिपोर्टिंग। ये है, अगर फैमिली के साथ कुछ देखने का मन है देन नेटफ्लिक्स का चुंबक, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि इसका स्टार कास्ट बड़ा मजे का है। यहाँ नीना गुप्ता है, देवेंद्र भोजानी है, सुमित व्यास है एंड इट्स अ बिग एंसेंबल कास्ट, फाइव नेबरिंग फैमिलीज, खुले दरवाजे, अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस, जो नेबर से अक्सर आती है ना वो राय जो हमें अक्सर चाहिए नहीं होती है। सो बेसिकली आप वो जमाने में पहुंचोगे जब व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत नहीं होती थी सोसाइटी की, बस नेबर्स के दरवाजे खुले हैं और बालकनी से ताक झाक से सब कुछ पता लगता था। So well, movies की बात करें तो अल्फा आलिया भट्ट और शर्वरी की ये भी स्ट्रीम हो रही है। तो इतने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं मैंने, आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो वो मुझे बताइए।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wirf la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो
3: जब डर गया था
2: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तो
2: वाली बातें कर रहा
3: है क्या? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल
3: जा।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

वेल, शायद ये गाना आपके दिन को और भी स्लो डाउन कर ले, आपके मूड को एक अलग ही जोन में लेकर जाए। कोई ठहराव, खूबसूरत यादें, एवरीथिंग जुड़ी हुई ये गाने के साथ है ना। पंकज दास की आवाज में ये गाना, और उम्मीद करती हूँ कि बस सुकून से आप ये गाना सुने। अनमिर्ची

पंकज उदास की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना, आई एम श्योर इट इज द हाईलाइट ऑफ योर डे। ऐसे खूबसूरत गाने ऐसे ही हो जाते हैं कि आपका दिन का ना मूड बना लेते हैं। डिड इट एक्चुअली? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरनून है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और क्योंकि आज वीकेंड है और ये ऐसा वीक है जहां पर मेरे ख्याल से ये वीकेंड पर बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे सारे बिजी रहने वाले हैं कि भाई स्कूल की तैयारी करनी है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है। और आई एम श्योर द किड्स हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, स्पेशली स्टेशनरीज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो बस ये सारी तैयारियों के बीच में डोंट मिस आउट द बैक टू स्कूल इवेंट्स जो सिर्फ ये हफ्ते ही रहने वाले हैं। तरह तरह के मॉल में हर जगह पर तो आपको मिलेंगे, लेकिन मिर्ची का अपना अपने स्टाइल में होता है भाई, हर साल होता है। और बच्चों को एकदम धमाल मस्ती के साथ में हम स्कूल भेजते हैं। ये तो होता है कि हम मस्ती करते हैं उनके साथ में है और स्कूल बच्चे जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब स्कूल छूटने की ना कुछ अच्छी और बुरी बात भी है। ऑफकोर्स बुरी बात यह कि हमारे स्कूल के फ्रेंड्स छूट गए, लेकिन अच्छी बात यह भी थी कि भाई वो स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क, कॉम्पिटिशन, ये सबसे तो भाई छुटकारा मिल गया है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स आउट देयर। वैसे हम मिलने वाले आपको शाम में, जिसने भी रजिस्टर किया है बड़ा मजा आने वाला है यार, बड़ा मजा। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना, प्यारा सा गाना, अनमिर्ची इट्स हॉट।

घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।

0: कभी नोटिस किया है आपने कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत लंबा इंतजार करते हैं? और वो पल जब आते हैं ना, तो वक्त उन्हें रोकता ही नहीं, बस गुजर जाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज इस खूबसूरत ख्याल पल पर मेरी डायरी से आपके लिए शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, पल पल इंतजार किया उस पल के लिए, वो पल भी आया तो एक पल के लिए। पल पल इंतजार किया उस पल के लिए, वो पल भी आया तो एक पल के लिए। अब हर पल दुआ है उस पल के लिए, काश आ जाए वो पल एक पल के लिए।
2: पल एक पल में ही थम सा गया।
0: शायद इसीलिए कहते हैं मोमेंट्स को सिर्फ जीना नहीं चाहिए, उन्हें महसूस भी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा नॉर्मल सा लगने वाला पल कल आपकी सबसे खूबसूरत याद बन जाए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah live.

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना माय फेवरेट माधुरी दीक्षित का, और एक ही गाने में इतने सारे एक्सप्रेशंस कैसे कर लेती हो माधुरी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। वैसे वेलकम करने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर, टाटा बाय बाय करने को आई हूँ। माई वीक इज गेटिंग ओवर। और जाते जाते एक अच्छा खासा रिमाइंडर देने चाहती हूँ कि अगर आप अर्ली राइजर हैं, देखो मतलब वीकेंड हो वीकडे हो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सुबह सुबह उठ जाते हो, मतलब मेरी तरह ही सुबह काम की वजह से दुनिया से पहले उठ जाते हैं, तो कल जरा आसमान की तरफ भी देख लेना, क्योंकि कतर में कल सुबह मतलब आधी रात ही समझ लीजिए, यहाँ पर तकरीबन ऐसे कुछ आधी रात नहीं अराउंड 4, आई टेल यू द एग्जैक्ट टाइमिंग, लूनार एक्लिप्स का बिगनिंग फेज है, विजिबल होने वाला है। दोहा में अराउंड 4:23 AM से शुरू होगा और अराउंड 4:57 AM तक बेस्ट विजिबल फेज होने वाला है। उसके बाद मून भी बोलेगा मेरी शिफ्ट हो गई खत्म, बिकॉज अराउंड 5:11 इट सेट्स। और एक इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया वाले ड्रामेटिक रेड ब्लड मून पिक्चर एक्सपेक्ट मत करना। कतर से हमें मेनली पी नमरल फेस दिखने वाला है, मतलब मून थोड़ा सटली डार्कर लगेगा आपको। सो कल अगर 5 बजे के आसपास आंखें खुल जाए या फिर आप पूरी नाइट बाहर घूम फिर के सुबह के वक्त घर जा रहे हो तो ये जरूर देख सकते हैं आप। चलो मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते, क्योंकि अभी मेरा जाने का वक्त आ गया है। शाम को बच्चों को भी तो मिलना है, बैक टू स्कूल का इवेंट है हमारा मिर्ची का, एंड बहुत धमाल करना है। मीनवाइल चल वहाँ जाते हैं वहीं जाते हैं जहाँ पर हमारा वीकेंड हमें पुकार रहा है। फिलहाल तो मेरे घर पुकार रहा है और अच्छी खासी नींद लेने जा रही हूँ मैं। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय सायोनारा माइक से दिल तक आफरीन।

जहाँ पर हमारा वीकेंड हमें पुकार रहा है। फिलहाल तो मेरे घर पुकार रहा है और अच्छी खासी नींद लेने जा रही हूँ मैं। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय सायोनारा माइक से दिल तक आफरीन।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 10 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो 89.6 FM पर मीठी मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखिए आज के दिन पे जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि अब की बार जो नया हफ्ता आएगा आपकी जिंदगी में आजादी दिवस बस लेकर ही आएगा।
1: मिर्ची अंशु
0: आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए नए जोश जुनून जज्बे के साथ वीकेंड का स्वागत करते हुए एक बार फिर से मैं आ ही चुकी हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, ये वीकेंड जो है बड़ा कमाल वीकेंड है, क्योंकि इसके बाद जिसकी दस्तक होने वाली है ना, वो सबकी जिंदगी में आजादी लेकर आएगा। भैया खासकर जिन घरों में बच्चे हैं वो मेरी बात को जरूर समझ सकते हैं। देखिए स्कूल्स जो है संडे से शुरू होने जा रहे हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक दौर था जब हमें लगता था नहीं, नानी के घर से नहीं जाना, ये छुट्टियां क्यों खत्म हो रही हैं। आज की डेट में माँ बाप से ज्यादा बच्चे इंतजार करने लगे हैं कि भैया स्कूल भेजो, जल्दी भेजो, बहुत हो गया, तुम्हारी शक्लें बहुत देख ली। एंड मुझे पता है कि पेरेंट्स भी उतने ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि जहां पे पापा ऑफिस के लिए निकलेंगे, मम्मी भी जो वर्किंग है वो भी ऑफिस के लिए तो निकलेंगी, लेकिन हाँ जो मम्मियां घर पे रहती हैं, एक बार बच्चे जो स्कूल गए, पति जो ऑफिस गए, उसके बाद देखो आजादी दिवस शुरू होता है। और कैसे शुरू होता है, आओ बहन चुगली करें। हर दिन जो महिलाओं का जमावड़ा होगा, जो फन फिल्ड बातें होंगी, देखो कहीं अच्छी जगह जा रहे हो ना तो जरूर बुलाना, चुगली में भी मदद करूंगी, साथ में खाने पीने में, यार आप पार्टी दो और हम ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए जी आज के दिन को खुशी से मनाते हैं, उसके बाद कुछ देर में और भी खास बातें आप तक पहुंचाते हैं। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kon?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: आहिस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतनी धीरे के बोल रहा है.
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तब क्या, क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था.
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी.
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से. और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
1: जाना जरूरी है.
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई.
2: अच्छा, तो दुबई जाना है
1: भाई. जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
2: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
1: ठीक है ठीक है.
2: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
1: आपने सही कह रहा है.
2: हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ.
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
1: करवा देना भी है आपसे.
2: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
1: सॉरी सॉरी सॉरी.
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
1: Okay, okay.
2: I love you.
1: I love you too.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ. Only on मिर्ची. It's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: हाय, ये तो पसीना निकला।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: देखो वैसे तो मैं बड़ी सुरीली हूँ, मेरी आवाज कितनी प्यारी है ये आपसे बेहतर और कौन ही जानता है। बस ये गाना गाते वक्त ना सुर जो है क्या करूँ, इतनी अच्छी गायकों की जरा हिल से जाते हैं। लेकिन ये हिले हुए सुर थोड़े और इसलिए हिले क्योंकि मौसम विभाग ने जो वादा किया वो निभाया नहीं। हाँ जी, हमें ऐसे सुनने में आया था कि बारिश की रिमझिम बूंदे जो है बिल्कुल आज हमारे ऊपर कहीं ना कहीं बरसने वाली है। बस इनके इंतजार में मैं घर के बाहर खड़ी रही, 5 मिनट खड़ी रही, बूंदे आई लेकिन वो पानी के बदले कब पसीने में तब्दील हुई, यानी कि बदल गई ये मुझे पता ही नहीं चला। क्या आपके इलाके में इर्द गिर्द कोई बारिश की बूंदे आपको नजर आई? सच बता रही हूँ, जहां हो रही होंगी ना मैं वहीं आऊंगी, पक्का आऊंगी, मुझे 101% बताना। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो आधा दिन भी नहीं निकला है, क्या पता फाइनली वो बारिश की बूंदे जो है हमारी जिंदगी में आए और आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक ह्यूमिडिटी को और बढ़ाए। सतर्क रहे, सावधान रहे, पानी और अंशु को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते चले। रेस्ट स्टेडियो नंबर 3, बंदी का नाम अंशु।

0: यार सच कह रही हूँ, हमने ना हमारे माँ बाप को जरा भी परेशान ना किया।
1: मिर्ची अंशु
0: एनालिसिस, पूरे सबूत के साथ अपनी बातों को सच प्रूफ करके दिखाऊंगी मैं आपको। चलो बचपन की ही बात करते हैं। याद है आपको, हमें उठाने के लिए माँ बाप को कभी कोई जद्दोजहद ना करनी पड़ी। फिलॉसफी जो है बड़ी सिंपल हुआ करती थी। अगर गर्मी का मौसम है, पंखा या कूलर जो है बंद करके चले जाओ, बच्चे इतने आलसी हैं नीचे से उठ के ऊपर तो ना जाएंगे स्विच ऑन करने के लिए। एंड अगर ठंड का मौसम है तो चुपचाप रजाई जो है वो छीन के ले जाओ। चाहे बच्चा कितना भी रोए, चिल्लाए, चीखे, ना वो जो है आपकी जिंदगी में शामिल ना होगी। इवेंचुअली थक हार के बच्चा जो है खुद उठ ही जाएगा। आज के बच्चों को देखो कितनी लग्जरीज हैं यार। मतलब ये स्कूल ही जो शुरू होने वाली है उसके लिए कितने सारे इवेंट्स, बैक टू स्कूल, ढेर सारे प्रमोशंस, एक्टिविटीज। ठीक है जी, आपकी जिंदगी में चार चांद लगाते हुए आपको तो पता है आज का दिन आपके लिए हमारे लिए बहुत खास, बहुत स्पेशल। इस बार अपने सबसे बड़े एडिशन के साथ मिर्ची बैक टू स्कूल आपकी जिंदगी में शामिल हो चुका है। एंड जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो आज शाम को मिर्ची की टीम के साथ मिलने वाले हैं, ढेर सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड स्कूल के लिए फुल्ली रिजुविनेट एंड रिचार्ज हो तैयार होने वाले हैं। माँ बाप, तुम्हारी प्रिपरेशन जो है ना हमने कम करवाई है, बाकी इंटरनल कमीशन की बात बाद में कर लेंगे। अरे ज्यादा नहीं यार, घर पे अच्छा खाना बनाओ, हमें बुलाओ, वी आर मोर देन हैप्पी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, फंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Sony Razdan, Alia or Shaheen, in dono mein se, who's most likely to listen to you even today?
3: Difficult one.
4: Why you ask?
3: Split between my children. So both of them in different ways.
4: Yeah.
3: But yeah, they are receptive generally. But I think I must be irritating them a lot because I give too much advice. That's what they tell me. So, kya bolu aapko?
2: Sony Razdan, aapne koi jawab nahi diya. आलिया या शाहीन किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: अब ये हुई ना बात।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: देखो मेरी ना एक दरख्वास्त है, एंड खास तौर पे दरख्वास्त है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन, आपने आज की डेट में जितने भी अभियान चलाए हैं, काश आप टाइम मशीन को अपनी जिंदगी में शामिल करें, मेरे स्कूल डेज में भी वापस आएं और वो सारी खूबसूरत चीजों को मेरी लाइफ में लेकर आएं। भाई साहब, इस वक्त अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन की एक खास मुहिम की बात करूं तो वो है आने वाले एकेडमिक सीजन को लेकर। जी हाँ बिल्कुल, एजुकेशन की क्वालिटी को और बेटर किया जाएगा, पूरे के पूरे पैटर्न को चेंज किया जाएगा एंड कुछ इस तरह की मेथोडोलॉजीज को शामिल किया जाएगा जिससे बच्चों की मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा सके। यानी कि पढ़ाई होगी लेकिन पढ़ाई बिना किसी स्ट्रेस एंड प्रेशर के होगी एंड इस बात की मॉनिटरिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली की जाएगी। साथ ही इस टेक्नोलॉजिकल एडवांस में ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन को स्टडीज में अभी से इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं आने वाले वक्त में आने वाले चेंजेस के लिए पूरी तरह से अभी से तैयार रहे। लेकिन अगेन ये सारी चीजें होंगी मेंटल वेलबींग को खासकर ध्यान में रखते हुए। काश हमारे समय में भी ऐसा होता तो भैया घर पे डांट सुनने के बाद पढ़ाई को लेकर जो स्कूल में भी दिन रात पड़ी पड़ती थी ना, वो हमारे साथ ऐसा कुछ ना होता। वो बात अलग है, इतने नालायक थे, दुनिया जमाना क्यों ना चिल्ला ले, नंबर तो जितने लाने हैं हम उतने ही लाएंगे, कम होंगे लेकिन ज्यादा ना आएंगे। स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: हाय मैं हूँ सलमान खान। अब रेडियो मिर्ची पर एक मजेदार मिर्चीदार किक आपको मिलेगा। मेरी फिल्म किक का ये गाना सुनकर रेडियो मिर्ची 98.3 FM हॉट है।

0: देखो, जब हर किसी के निशाने में एक ही शख्स हो ना, तो लगता है उसे तो मुर्गा बना ही लेना चाहिए।
1: मिर्ची अंशु
0: भाई साहब, इंतजार है। और इनका इंतजार तो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बॉस की बीवी को भी है। अरे, सुहानी दीदी की बात कर रही हूँ। सुहानी शाह दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन, बहुत अच्छी तरह से जानती है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे कैसे पकड़ा जाए, एक एक दिमाग के खाने जो है वो कैसे खोले जाए, उसके बाद उसे चुप्त कैसे किया जाए। तो मैं तो सोच रही हूँ कि सबसे पहले उनकी मुलाकात मैं अच्छी तरह से कराऊँ, किसी की तो मेरे बॉस की कराऊँ। उनकी बीवी का अरमान भी पूरा होगा और हम सब का भी होगा कि आखिरकार मेरे बॉस के दिमाग में चल क्या रहा है। Having said that, न जाने ऐसे कितने इवेंट्स के बारे में हम अखबारों में पढ़ा करते हैं, टेलीविजन स्क्रीन्स में देखा करते हैं, एंड ऐसा सोचा करते हैं कि भाई ऐसा किया तो उसने किया कैसे, काश मैं इसका शो जो है वो लाइव अटेंड कर पाऊँ। तो जब ऐसा मौका आपको कतर में मिल रहा है, सो वाई वुड यू वॉन्ट टू मिस इट। वेल, 25th of September, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, कतर में पहली बार सुहानी शाह परफॉर्म करने आने वाली है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड नॉट वॉन्ट टू मिस एट ऑल। फटाफट से जाओ प्लैटिनम लिस्ट क्यू टिकट्स या स्नूनू सिटी पर, एंड अपनी टिकट्स जो है ना सिक्योर करो। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स हाथ से निकल जाएं, उसके बाद मत कहना अंशु कुछ डिस्काउंट मिल सकता है क्या। गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आके ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
4: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: भाई। आप ही रखो यार, आप मतलब हमें तो रख लो, ये बीच में रख लो हमें तो यार।
4: अरे यार,
3: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी, बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
3: तुमने
4: बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो।
5: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: देखो मुझे तो इन दिनों ये लगने लगा है कि कहीं किताबों से ज्यादा उस टिफिन के डब्बे का वजन तो ना होता।
1: मिर्ची अंशु
0: वाल, अगर इस वक्त अपने देश यानी कि कतर की हम बात करें और यहाँ पे चलाई गई मुहिम को देखने की कोशिश करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने हमारे बीच पेश की है वो बस यही कि हर मायने में बच्चों की वेलबींग को सबसे ऊपर रखा जाए, चाहे उनके फिजिकल वेलबींग की बात करें, मेंटल या इमोशनल। चलिए अगर मैं सिर्फ स्कूल बैग की ही बात करूं तो इसके लिए खास स्पेसिफिकेशन जो है वो पेश किए गए कि भैया जितना आपके बच्चे का वजन है ना उसके स्कूल बैग का वजन 10-15% ही हो, उससे ज्यादा ना हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इतना समझ जाएं कि आप अपने बच्चे की बॉडी में एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं इन केस द बैग इज अ हैंगिंग बैग एंड कहीं ना कहीं स्पाइनल प्रॉब्लम्स की तरफ आप उन्हें लेकर जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी यही बात कही एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने इसे रीएम्फसाइज किया है। देखो मैं तो एक ही बात कहूंगी, आज की डेट में आपके बच्चे के बैग में जितनी किताबें होती हैं ना, कहीं उससे बड़ा उसका टिफिन का डब्बा ना होता। क्योंकि जितनी कहानियां मैं इन दिनों टिफिन की सुनती हूँ, कभी कभी लगता है कि कहीं मैं डाका डालूं तो एक बच्चे के टिफिन पे, नहीं अपने जमाने में किया है, आज भी मिल जाए तो जरा अच्छा होगा। भाई साहब बच्चे जो है टिफिन में 56 भोग लेके जाते हैं। वेल, आज की डेट में ट्रॉली बैग्स की भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो अगर ऐसा कुछ लगे तो वहां पर शिफ्ट हो जाए और टिफिन में जो बच्चे के लिए बना रहे हैं वो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी बस ले ही आए। बच्चों का ध्यान रखें, खूब ध्यान रखें, साथ टिक के बने रहें, सुनते रहें कदर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: stupid man.
1: यार एक बात बताना, क्या आपकी मुलाकात कभी ऐसे किसी शख्स से हुई है?
2: मिर्ची अंशु
1: यार तुमको पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइफ हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अस टू पीपल. जरा देखो ना, कई बार लोग हमारी जिंदगी में बहुत सालों के लिए आते हैं, लेकिन कुछ बस चंद लम्हों के लिए. लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग जो शायद हमारी जिंदगी में सबसे कम वक्त के लिए आते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो यादें होती है ना, वो बेशकीमती हो जाती हैं. शायद इसीलिए हर एक रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बना भी नहीं होता. शायद कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में बस इसीलिए आते हैं कि वो हमें थोड़ा सा बदल सकें, थोड़ा सा हमें कुछ समझा सकें, या जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखा सकें. क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? क्या ऐसा कोई मिला है? इस पे ना मैंने कुछ लिखा है. हर शख्स का किस्सा उम्र भर का नहीं होता, हर साथ का वादा सफर भर का नहीं होता. कुछ लोग मिलते हैं बस दिल को छू जाने के लिए, हर मिलने वाला इंसान ठहर जाने के लिए नहीं होता. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेन गुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: Who's most likely to die to protect you? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: I have few people, yes. Yeah. I can say they're my friends, they're my family. Like at least two people I know. I'm not naming them, but they know
3: who they are.
4: Two people. They will die for me. Yeah, I'm blessed. I'm blessed.
2: जीशु सेन गुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, because I will also. Yeah. You're listening to Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: देखो कुछ पूछा जाए या ना जाए, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो हर घर में अब जरूर पूछा जाएगा।
1: मिर्ची अंशु।
0: भाई साहब, अगर क्वेश्चन ऑफ द फैमिली की बात करें तो उसका टैगलाइन अगर किसी सवाल को दिया जाए तो बस यही कि आज खाने में क्या बनाना है। वो बात अलग है कि बनाने तो टिंडे, आलू या कुंदरू ही है, लेकिन हाँ, सवाल पूछना जो है ये लाजमी है। हैविंग सेड दैट, इससे भी बड़ा क्वेश्चन अब हर किसी की जिंदगी में आएगा, खासकर मम्मियों की, कि यार टिफिन में क्या डालना है, बच्चों के टिफिन में। यार दिस इज सच अ डिफिकल्ट एंड अ टफ क्वेश्चन, इनफैक्ट सच अ टफ टास्क। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्यूरेटेड मेन्यू है 7 days या 5 days का, हर दिन में 2 lunch breaks होते हैं, कि भैया बच्चों के टिफिन में क्या डाला जा सकता है, प्लीज शेयर करो 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम Mirchi1Kataria, मिर्ची अंशु। ना जाने कितनी मम्मियों की जिंदगी की परेशानी जो है ना, आप उसका हल निकाल ही देंगी। यार हमारा जमाना कितना अलग था, याद है हर दिन टिफिन में पराठा अचार ले जाया करते थे, ज्यादा से ज्यादा आलू की सब्जी या भिंडी की सब्जी। भाई साहब बचपन से लेके 12वीं कक्षा तक ना मैं यही खा के बड़ी हुई हूँ फिर भी हर दिन ऐसा लगता था खाने में कुछ नया है। लेकिन आज के बच्चों को आप इसी ब्रेड बटर के लपेटे में नहीं ला सकते, वैरायटी का जमाना आ गया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, टिफिन बॉक्स में आखिरकार क्या डाला जाए। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम Mirchi1Kataria, मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू Mirchi, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: अरे सर, मेरा बच्चा सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाता है, जवाब दे दे के थक गया हूँ मैं, क्या करूँ।
1: अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना तेरा बाप हूँ।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: बिना अलार्म को स्नूज में बहुत डाल लिया, अब जरा एक बार में उठने की आदत जो है ना डाल ही लो।
1: मिर्ची अंशु
0: हाय, रात भर की नींद एक तरफ, अलार्म को स्नूज में डालने के बाद वो 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद एक तरफ, और ये बात जो है ना तुम और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी से कोसों दूर जाती हुई नजर आ रही है। जब सुबह सुबह ये पता हो कि रास्ते में भीड़ ज्यादा होगी, बच्चे जो हैं पूरे रोड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, स्कूल की बसेस नजर आएंगी एंड साथ ही गाड़ियां भी बढ़ जाएंगी, तो घर से निकलना होगा जल्दी, तो जो 15 मिनट तुम्हारा अलार्म का स्नूज बटन बंद होगा, हाय उसकी पीड़ा तुम और मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हकीकत है जी, अगर लग रहा है ना कि अब पहले की तरह सड़कें खाली खाली मिलेंगी, तो ये मौका जो है अब हाथ से जरा सा जाने वाला है, तो या तो फिर अलार्म का टाइम चेंज करें, फिर 15 मिनट का एक्स्ट्रा नींद जो है स्नूज के जरिए ले ही लें, नहीं तो एक बार में उठने की आदत जो बच्चों को सिखाते हो वो अपनी जिंदगी में आप शामिल कर लो जी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल, आप
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखना,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, मजे ले रहा
4: फोन
2: करके।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। Ready?
7: Ready!
6: To learn?
7: Yes!
6: To play?
7: Absolutely!
6: To grow?
7: With Maserati!
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
7: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs!
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

थिंग इज दैट रुपया सबसे बड़ा है भैया। एब्सोल्युटली ये बात जो है आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माना कि लोग अक्सर कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, लेकिन सही बात तो ये है कि बिना पैसे के ना कुछ लाया जा सकता है ना ही कहीं जाया जा सकता है। हाँ जी, इसे दिल से ज्यादा नहीं लगाना है, लेकिन इसकी जरूरत को समझते हुए जिंदगी में मेहनत करना है, खुल के जीना है एंड पैसे की इम्पोर्टेंस के चलते उसकी बचत भी सही तरह से करना है। और ये सब कुछ करने का मौका आईपी मनी का अच्छा एक्सचेंज रेट आज हमें दे रहा है ना। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.17, पाकिस्तानी रुपीज 76.13, बांग्लादेशी टका 33.79, लंगन रुपीज 90.12 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.67। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।

0: वैसे दीदी बाकियों की जिंदगी में तो अच्छा खासा कोहराम मचाती हैं, ये कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हैं क्या?
1: मिर्ची अंशु
0: देखो ये बात तो तय है कि तुम जिससे भी शादी करने वाली हो वो हमेशा सुखी ही रहने वाला है। भाई साहब तुम उसके दिमाग को सही सही तरह से पढ़ लो एंड ये बात समझ जाओ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जरा सोचो उस आदमी की जिंदगी मुकम्मल ना हो तो फिर क्या ही हो। सबसे बड़ी समस्या हस्बैंड्स की जिंदगी में अगर कुछ है तो वो बस यही कि काश मेरी वाइफ सही तौर पे समझ पाती कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और अपनी कहानी जो है वो ना बना पाती। वेल सुहानी शाह दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की बात करें, मैजिशियन की बात करें, तो इस हुनर के साथ बहुत अच्छी तरह से जानी और मानी जाती हैं कि किसी के दिमाग को सही सही तरह से कैसे पढ़ा जाए। 25 सितंबर को ये आ रही है कतर अपने मैजिकल पावर के साथ हम सबको मंत्रमुग्ध कर देने के लिए। भैया हम तो सुहानी दीदी से यही पूछेंगे, औरों की जिंदगी की कहानी तो आप बना पाती हैं और बता भी पाती हैं, लेकिन जो आपसे शादी करेगा उसका अच्छा होगा या क्या ही होगा, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? वेल ये बात भी हम उनसे पूछ ही लेंगे। आपने अपनी टिकट्स बुक की या ना की? स्नूनू सिटी प्लैटिनम लिस्ट क्यू टिकट्स, भाई सब हम हर जगह अवेलेबल, जाए जल्दी जल्दी अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो अवेल करें एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल फॉर वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इवेंट्स दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस एट ऑल। सुहानी शाह लाइव इन दोहा 25 सितंबर कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Karisma Kapoor.
3: Who's most likely to sleep with the lights on because they're so scared to death?
4: I have to answer this?
3: No, I'm asking just like that. Karishma, ma'am, ek ka to jawab de do.
4: Probably Kareena.
3: Handy.
4: Out of both of us.
2: Bebo ko dekh ke lagta nahi hai wo darti hongi. Because she's always in safe hands. If you know what I mean. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है
8: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर दिस 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment get ready to watch music and dance duo Charan and RC एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Tickets अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स

0: माँ बाप की इतनी खुशी वाली फीलिंग को फाइनली आज देखने का मौका आ ही गया।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो, ये बात तो हमें तभी समझ में आ गई थी कि जैसे हमने बैक टू स्कूल की रजिस्ट्रेशन ओपन किए, अगले आधे घंटे में 200 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज जो है ना हमें मिल ही गए। मतलब माँ बाप कितने खुश थे कि 2 महीने हमने खूब संभाला, स्कूल अगले हफ्ते खुलेगी, उसके पहले अब जो है ना हमारे बच्चों को 2 घंटे तुम संभालो। फाइनली द टी डे हैज अराइव्ड। मिर्ची बैक टू स्कूल अपने सबसे बड़े एडिशन के साथ, ढेर सारे बच्चों के साथ, उनको पूरी तरह से प्रेप करने के लिए तैयार। तो क्यों ना स्कूल्स खुलने के पहले बच्चों को एक बार फिर से रिजुवेनेट एंड रिचार्ज कर ही दिया जाए। सारी की सारी ग्लिम्पसेस जो है आप जरूर देख पाएंगे, बस हमें फॉलो करते रहना मिर्ची वन कतर ऑन इंस्टाग्राम। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: एक रियलिटी शो पे शुरू हुआ था इनके 7 जन्मों का सफर।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अल्टीमेट म्यूजिशियन एंड सिंगर डुओ सचेत टंडन एंड परंपरा ठाकुर, जो अब बन चुकी हैं परंपरा टंडन। एंड यू नो, अक्सर आपने अपने आसपास सुना होगा कि यार अपने वर्क स्पेस में ना आपको कोई रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप, कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं रह जाती। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सचेत एंड परंपरा, जो मिले थे द वॉइस ऑफ इंडिया के फर्स्ट सीजन में और वहां शुरू हुई उनकी म्यूजिकल पार्टनरशिप। एंड इवेंचुअली बॉलीवुड गॉट द डुओ बिहाइंड बेखयाली एंड मच मोर लव्ड सॉन्ग्स। और आज अचानक इन दोनों के पार्टनरशिप की बात इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे शो पे होने वाले हैं ये दोनों ही मिर्ची गिरफ्तार, जिनसे होगी इनके करियर, इनके लाइफ, इनकी पार्टनरशिप, सब चीज के बारे में डिटेल्ड बात। बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड बाबू मोशाय। अभी तो इस गिरफ्तारी के अलावा और भी बहुत कुछ प्लान है ऑन द शो, बट टू एंजॉय ऑल ऑफ दैट यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virba la murga.
2: Mirci, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अबे मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा हूँ?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे
4: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हैंगओवर अभी उतरा नहीं था, दैट दूसरे नशे की तैयारी हो चुकी है। ओके ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, भाई मैं आवारापन 2 के हैंगओवर की बात कर रही हूँ जो अभी उतरा नहीं था। दैट प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने जन्नत 3 कंफर्म कर दी है, जिसकी स्क्रिप्टिंग इज अंडर वे एंड बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। AR रहमान तमिलनाडु से अगला सिंगिंग टैलेंट ढूंढने वाले हैं, तभी तो उन्होंने लॉन्च किया है तमिल आइडल। हां जी, द शो एम्स टू डिस्कवर, सेलिब्रेट एंड नर्चर द नेक्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तमिल वॉइस। आगे शेक्सपियर ने भले ही कहा है व्हाट्स देयर इन नेम, बट AR रहमान का नाम अगर किसी प्रोजेक्ट पर जुड़ जाए तो उसमें तो चार चांद लगने ही लगने हैं। द रेवोल्यूशनरीज नाम की पीरियड ड्रामा सीरीज, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं निखिल आडवाणी, बैकड्रॉप होगा इसका इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और इस सीरीज में रोहित सराफ, भुवन बम, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह के साथ साथ लापता लेडीज फेम प्रतिभा रत्ना भी नजर आएंगी। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर का प्रोमो भी आ चुका है, नहीं देखा देन गो चेक इट आउट। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। अब तक मेरे एविड लिसनर ने तो समझ लिया होगा दैट इट्स टाइम फॉर फाइंडिंग मिर्ची फिल्म जी, जहाँ मैं आपको कॉल करके कॉल कैसे करती हूँ, जब आप मेरे डीएम में यानी मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर भेजते हो तो कॉल करके मैं आपको इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है प्रथम। हाय प्रथम, कैसे हो आप?
3: एकदम बढ़िया श्रुति, आप कैसे हैं?
0: मैं भी एकदम बढ़िया। तो

0: ये दोनों और बढ़िया हो जाते हैं। फिल्म जी गेम शुरू करते हैं, तैयार हैं आप?
1: जी।
0: ओके जी। डियर जिंदगी में आलिया को अपनी जिंदगी से प्यार करना कौन सिखाता है?
1: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान छिपकली वाले जूते किस फिल्म में पहनते हैं?
1: बादशाह।
0: बादशाह में विलन कौन है?
1: अमरीश पुरी।
0: अमरीश पुरी मोगैम्बो किस फिल्म में बने हैं?
1: अपना मिस्टर इंडिया।
0: मिस्टर इंडिया में गायब होने के बाद लाल लाइट में कौन दिखाई देता है?
1: अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर किस फिल्म में इंग्लिश सीखने वाले भैया जी बने हैं?
1: टशन।
0: टशन में रूह चुराने वाली छलिया कौन है?
1: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो आत्मा बनी है?
1: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो आत्मा बनी है तलाश।
0: तलाश में पुलिस वाले कौन है?
1: आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो क्रिकेट खेलते हैं?
1: लगान।
0: लगान की लीड एक्ट्रेस?
1: अरे क्या नाम भूल गया मैं तो उनका। ये तो मैं भूल गया श्रुति।
0: कोई बात नहीं, काफी टाइम भी हो गया उनको स्क्रीन पे देखे हुए, बट अच्छा खेला
1: यार। जवाब क्या था श्रुति, ये तो बताओ।
0: अब जवाब मैं आपको बता दूंगी तो आगे का गेम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा ना, बट हाँ आपने इस गेम को जो इस लेवल तक पहुंचाया है उसके लिए ये टैग तो जरूर दूंगी।
2: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई प्रथम बने हैं हमारे पहले मिर्ची फिल्मची। अगर आप दूसरे वाले बनना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर DM कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। इट्स ऑल।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: Yes, you guys tried. It's time to find Mirchi Filmchi number 2 for the day. So basically, आपको मेरे Instagram DMs में अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले जुड़े थे प्रथम, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है अपूर्व। हाय अपूर्व, कैसे हो आप?
3: बढ़िया, I'm big fan.
0: अरे यार
3: ओके
0: मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। जो सवाल था वो है, लगान फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन है, आपको पता है?
3: The Indian one, right?
0: हाँ.
3: शी इज़ ग्रेसी सिंह।
0: ओके, ग्रेसी सिंह डॉक्टर किस फिल्म में बनी है जिसमें उनका नाम चिंकी है?
3: ऑब्वियसली मुन्ना भाई।
0: मुन्ना भाई वॉर्ड,
3: मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस।
0: मुन्ना भाई एमबीबीएस में जादू की झप्पी कौन देता है?
3: अपने संजू भाई ब्रो।
0: संजय दत्त कांचा चीना किस फिल्म में बने हैं?
3: अग्निपथ।
0: अग्निपथ में विजय दीनानाथ चौहान कौन है?
3: विजय दीनानाथ चौहान इज ऋतिक रोशन, ऑफ कोर्स।
0: ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन की फिल्म जिसमें वो विजुअली इम्पेयर्ड है?
3: अभी यार वो जिसमें उसके नाम से मक्खी बैठ जाती है।
0: यस यस यस।
3: क्या नाम है? विजुअली इम्पेयर्ड इन काबिल।
0: काबिल में उनकी वाइफ कौन है?
3: यामी गौतम।
0: यामी गौतम की फिल्म जिसमें स्पर्म डोनेशन होता है?
3: विकी डोनर, ऑफ कोर्स।
0: विकी डोनर में स्पर्म डोनेट कौन करता है?
3: आयुष्मान खुराना।
0: आयुष्मान खुराना की फिल्म जिसमें वो पियानिस्ट बने हैं?
3: साथ में अंधे भी हैं, राइट?
0: हाँ।
3: अंधाधुन। अंधाधुन।
0: अंधाधुन में अपने हस्बैंड का मर्डर कौन करता है?
3: तबू, ऑफ कोर्स।
0: तबू की फिल्म जिसमें लड़की का चक्कर है बाबू भैया, ये वाला डायलॉग है?
3: हेरा फेरी।
0: हेरा फेरी में श्याम कौन है?
3: सुनील शेट्टी।
0: सुनील शेट्टी की फिल्म जिसमें वो लड़की पटाने के लिए फिजिकली चैलेंज्ड होने की एक्टिंग करते हैं?
3: दीवाने हुए पागल।
0: यस, दीवाने हुए पागल में लड़की को असलियत में किससे प्यार होता है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें गन्ने के खेत हैं?
3: जबीमेंट।
0: यस, एंड वी हैव मेट आवर सेकंड मिर्ची फिल्मची।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: बाकी आप हंजी जो वॉल्यूम बढ़ा के गेम पे फोकस कर रहे थे, फटाक द चिटक मिर्ची श्रुति के डीएम्स में अपना नंबर भेजिए ताकि आप भी इस गेम का हिस्सा बन सके। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
1: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Come on, Sam. Come on, give it a try.
1: You did it all.

0: B-Town is quite obsessed with them.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मैं साउथ इंडियन फिल्मों की बात कर रही हूँ बाबू मोशाय, जिसपे बीटाउन का दिल तो हर दिन आता ही नजर आता है हमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं विच एक्चुअली वर गुड हिंदी रीमेक्स ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स. और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्में डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वील टॉक अबाउट द मूवी स्वदेश, उसके बाद हम बात करेंगे फिल्म हेरा फेरी के बारे में, देन वील गो ऑन टू अजब प्रेम की गजब कहानी, फिर डिस्कस करेंगे गुमराह और उसके बाद बिल्लू. तो चलिए शुरुआत करते हैं विद स्वदेश. वेल, ये मूवी आई थी इन द ईयर 2004, डायरेक्टेड बाई आशुतोष गोवारिकर, जो रीमेक है 2003 में आई कन्नड़ फिल्म चीगुरीडा कनासू की, जो इन टर्न एक कनाडा नॉवल पे बेस्ड है. एंड इट इज अबाउट रिटर्निंग होम टू स्पार्क चेंज. फिल्म की ग्राउंडेड स्टोरी लाइन हो या फिर इमोशनल डेप्थ हो, इन सारी चीजों को उठाकर गांधियन वैल्यूज को साथ में मिलाकर स्वदेश ने ये सिंपल पावरफुल कहानी को SRK की अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस के साथ हमें पेश किया था. एंड ऑफ कोर्स जब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो ऑडियंस भी तो वाह वाह ही करेगी. वैसे ऐसी ही कुछ और चार फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल बाबू मोशाय. तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: इंडस्ट्री को काफी गाइड किया है इस इंडस्ट्री ने।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं साउथ इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ बाबू मोशाय, जिससे टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे आइडियाज उठाए हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्में लेकर आई हूँ जो साउथ इंडियन फिल्म्स के हिंदी रीमेक्स हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट में बात की अबाउट द मूवी स्वदेश। अब नंबर दो पे हम बात करेंगे फिल्म हेरा फेरी के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। वेल, ये फिल्म जो है वो मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग पे बेस्ड है, जो 1989 में रिलीज हुई थी और उसको भी प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म में कॉम्बिनेशन है ह्यूमर और अनएम्प्लॉयमेंट की हार्श रियलिटी का, और हेरा फेरी में टाइमलेस कैरेक्टर्स, मस्त डायलॉग्स और अनफॉरगेटेबल केमिस्ट्री ने हम सबका दिल जीत लिया। तो अगर आपको हेरा फेरी पसंद है, देन मौका मिले तो रामजी राव स्पीकिंग भी जरूर देखिएगा। वे लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009 और ये 2005 में आई तेलुगु फिल्म सुगाडू का हिंदी रीमेक थी। सो इस रोमकॉम ने तेलुगु फिल्म की स्पिरिट तो उठाई लेकिन उसको ड्रेसअप किया लार्जर देन लाइफ बॉलीवुड कॉमेडी के साथ और दो अमेजिंग एक्टर्स के साथ, रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसी ही फिल्मों की डिस्कशन बाकी है, बट इन अ वाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गो टू इंस्पिरेशन है ये
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं साउथ इंडियन फिल्मों की बात कर रही हूँ, क्योंकि टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ से इंस्पिरेशन तो ले ही लेती है। तभी तो इतने सारे हिंदी रीमेक्स हैं ऑफ साउथ फिल्म्स। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट स्वदेश, नंबर दो पे हमने हेरा फेरी को डिस्कस किया, नंबर तीन पे अजब प्रेम की गजब कहानी, और अब बारी है नंबर चार पे फिल्म गुमराह को डिस्कस करने की। वेल, ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय वर्धन केतकर, जो 2019 में आई तमिल फिल्म थाडम के ऊपर बेस्ड है। ये एक क्लेवर ट्विन मिस्ट्री है जिसमें ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है। वैसे गुमराह जो है वो एक सस्पेंसफुल फॉर्मूला को कोर्टरूम ड्रामा के साथ मिक्स करके बॉलीवुड फैंस को ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ परोसी गई थी, विच डेफिनेटली कीप्स यू गेसिंग अबाउट द मूवी टिल द एंड। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म बिल्लू, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009। और ये फिल्म 2007 में आई मलयालम फिल्म कथापरयम बोल का हिंदी रीमेक है। ऑल्दो अगर आप मलयालम वर्जन देखेंगे तो आपको शायद बिल्लू समझ में ना आए, लेकिन फिल्म की वार्म स्टोरी टेलिंग ने मेरा दिल तो पर्सनली जीत लिया था। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर आप कोई ऐसी ही फिल्म को ऐड करना चाहें देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हैंगओवर अभी उतरा नहीं था, दैट दूसरे नशे की तैयारी हो चुकी है। ओके ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, भाई मैं आवारापन 2 के हैंगओवर की बात कर रही हूँ जो अभी उतरा नहीं था, दैट प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने जन्नत 3 कंफर्म कर दी है, जिसकी स्क्रिप्टिंग इज अंडर वे एंड बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। AR रहमान तमिलनाडु से अगला सिंगिंग टैलेंट ढूंढने वाले हैं, तभी तो उन्होंने लॉन्च किया है तमिल आइडल। हां जी, द शो एम्स टू डिस्कवर, सेलिब्रेट एंड नर्चर द नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तमिल वॉइस। बाकी शेक्सपियर ने भले ही कहा है व्हाट्स देयर इन नेम, बट AR रहमान का नाम अगर किसी प्रोजेक्ट पर जुड़ जाए तो उसमें तो चार चांद लगने ही लगने हैं। द रेवोल्यूशनरीज नाम की पीरियड ड्रामा सीरीज, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं निखिल आडवाणी, बैकड्रॉप होगा इसका इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और इस सीरीज में रोहित सराफ, भुवन बम, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह के साथ साथ लापता लेडीज फेम प्रतिभा रत्ना भी नजर आएंगी। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर का प्रोमो भी आ चुका है, नहीं देखा देन गो चेक इट आउट। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय दियो
2: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
3: वेट
2: टेल
3: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट आई सेड बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
1: अभिनय दियो द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश दियो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट चेक

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

बॉलीवुड का ये गाना हॉलीवुड की मूवी में इस्तेमाल किया गया। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। यस यस यस, एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं फिल्म स्वदेश की बात कर रही हूँ, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवारिकर। फिल्म में शाहरुख खान और गायत्री जोशी लीड रोल्स में थे, और इसका जो ये वाला एपिक गाना है, इसको इस्तेमाल किया गया है हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2 में। यस, यू हर्ड इट राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाने का जो ट्यून है ना, वो साल 2001 में ही तैयार कर लिया गया था, बिकॉज दैट वॉज मेड फॉर द मूवी लगान। हां जी, लेकिन उस फिल्म में जब इस ट्यून को यूज नहीं किया गया किसी गाने के लिए, देन इट वॉज रीयूज्ड फॉर द मूवी स्वदेश, एंड देन ये एपिक गाना तैयार हुआ। तभी मैं कहती हूँ बाबू मोशाय कि बड़े पर्दे पे जो कहानी देखने जाते हैं हम, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताइए, आई डू द होमवर्क फॉर यू। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज़ें आ रही है? मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहा
3: है. हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना, नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: आधे से ज्यादा जिंदगी तो सोच में ही निकल जाती होगी।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और बात हो रही है एग्जीक्यूट करने वाले लोगों की, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो कोई काम अगर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो शूट करना है, तो भाई वीडियो का आइडिया आ गया, उसकी प्लानिंग कर ली कि कैसे शूट करना है, उसको एग्जीक्यूट कर लिया और फिर उसको एडिट वेडिट करके पोस्ट भी कर दिया। लेकिन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल, ओहो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की चूल्हन के अंदर, क्योंकि ये पहले इंसान के पास जाएंगे कि भाई देखना मैंने ना एक ऐसा सा आइडिया सा सोचा है, तेरा क्या कहना है इसके ऊपर। तो सामने से वैलिडेशन मिल गया, तो फिर दूसरे इंसान के पास जाएंगे, फिर तीसरे इंसान के पास जाएंगे। मतलब ना इनका वैलिडेशन लेने का जो सिलसिला है वो सुबह से लेकर शाम तक चलेगा, और फिर सब बोल देंगे कि बेटा अब तो वीडियो बन जानी चाहिए। लेकिन कल जब आप इनसे पूछेंगे कि अरे तुम्हारे प्रोफाइल पे वो वीडियो आई नहीं, देन दे विल बी लाइक वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि थोड़ा यू नो नहीं हो पाया। वैसे मुझे इन लोगों के बारे में इसलिए अच्छे से पता है बिकॉज आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: कुछ म्यूजिक आपको एंटरटेन करते हैं और कुछ म्यूजिक आपके अंदर कुछ छोड़ जाते हैं।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक कंपोजर डुओ सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की बात करें तो इनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। द वॉइस ऑफ इंडिया पर हुई एक मुलाकात से शुरू हुआ इनका सफर, जो आज बॉलीवुड की यादगार मेलोडीज तक पहुंच चुका है। वे ख्याली हो, मेरे सोनिया हो या हमराह, इन दोनों के म्यूजिक में इमोशंस सिर्फ सुनाई नहीं देते, फील होते हैं भाई साहब। और आज मैंने अपने शो पे किया है इन दोनों को ही मिर्ची गिरफ्तार।
2: बरखुरदार आप हो गए हैं मिर्ची गिरफ्तार, मिर्ची गिरफ्तार।
0: तो सचेत एंड परंपरा, आप दोनों को लगभग 10 साल हो चुके हैं साथ में, सो इस ड्यूरेशन में क्या कुछ इवॉल्व हुआ है आप दोनों के बीच?
3: बहुत सारी चीजें, मे बी जो थॉट प्रोसेस हमारा अभी है वो शायद पहले नहीं था, और जो पहले था उसको इवॉल्व करते करते हम यहाँ पहुंचे। सो वी वॉन्ट टू थैंक ऑल आई ईयर्स, जो 2015 से जब हमारी उनकी मुलाकात हुई, एवरी ईयर वी हैव हैड आवर अप्स एंड डाउन्स। हम लोग ने स्ट्रगल साथ में दिया, हम लोग ने रिजेक्शन साथ में देखा है, और उस रिजेक्शन को कैसे सही लेके आगे बढ़ना भी साथ में देखा है, और अभी भी ये कहेंगे कि कुछ ज्यादा नहीं देखा है और इस जर्नी में काफी कुछ देखना बाकी है। बस उम्मीद यही रखते हैं कि जो भी हमारी छोटी सी एक कम्युनिटी है सचेत परंपरा लवर्स की, वो ग्रो होती रहे और वो हमें समझें, और हम भी उनको देखना चाहते हैं हमारे सारे कॉन्सर्ट में। वी वॉन्ट टू मीट देम पर्सनली, कि जब भी हमारा कॉन्सर्ट हो हम लोग साथ में वो इमोशंस महसूस करें। That is the whole dream.
0: ये आपका ड्रीम है और वहाँ हमारा ड्रीम है, I mean as an audience, that आप इसी तरीके से खूबसूरत म्यूजिक बनाते जाएं और हमारी प्लेलिस्ट बस ब्यूटीफाई होती जाए। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आज मेरे साथ मिर्ची गिरफ्तार हैं सचेत टंडन एंड परंपरा ठाकुर, द अल्टीमेट म्यूजिक कंपोजर डुओ ऑफ आर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। इनसे करेंगे आगे बातचीत, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

check.

0: कुछ आवाजें कानों तक पहुंचती हैं और कुछ आवाजें सीधा दिल तक।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर का म्यूजिक भी कुछ ऐसा ही है। मेलोडी में इमोशंस और इमोशंस में एक कहानी। और आज बात उनके म्यूजिकल जर्नी की, क्योंकि मेरे साथ मिर्ची गिरफ्तार हैं ये दोनों ही। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स कंटिन्यू।
3: बरखुरदार आप हो गए हैं मिर्ची गिरफ्तार।
0: हम आपकी जर्नीज की बात कर रहे थे, तो आप दोनों ने जिस तरीके से एक दूसरे के साथ इवॉल्व किया वो तो आपने बता दिया, बट ये जर्नी जो थ्रू आउट रही है उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज।
4: हम दोनों ही इंडिपेंडेंट म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक दोनों से ही हमें बहुत प्यार है, क्योंकि दोनों में ही क्रिएशंस हैं, दोनों में ही कनेक्शन है जो हम ढूंढते हैं। तो फिल्म्स तो आप लोग सब देख ही रहे हैं, गाने भी सुन ही रहे हैं। कुछ हम चाह रहे थे आफ्टर यू नो मलंग सजना, इतने सारे लोग आए, उन्होंने बोला कि थोड़े अपने भी और कहानियाँ, तो बस अभी लेकर आए हम अपना लेटेस्ट सॉन्ग साथ, जिसमें इमोशंस हैं और जेन्युइनली लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।
0: डेफिनेटली। एंड एक और गाना है जो बहुत अलग लेवल पे ही पसंद आया, कबीर सिंह का सॉन्ग बेख्याली। तो उस गाने के आने के बाद क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे ऐसे सी है कि यार उस टाइप का ही गाना चाहिए?
5: जब बेख्याली हिट हुआ तो दैट वाज अ फर्स्ट हिट जो हमने दिया एंड मेरे सोने, तो उसके बाद से सब केवल ये कहने आते थे कि बेख्याली जैसा ही गाना चाहिए। एंड इवन वो पूरा आई थिंक इंडस्ट्री में चलने लग गया था कि मुझे ना एक ये इस जैसा गाना।
4: इनफैक्ट काफी हमारे दूसरे जो फ्रेंड्स कंपोजर वो भी हमें आपस बोलते थे कि आज हमारे पास ना एक बेख्याली जैसा एक ब्रीफ आया, वैसा आ रहा है कि आप बेख्याली जैसा आप भी बना दो, अभी बना दो, अभी बना। तो उनके लिए तो खैर छोड़िए, बिकॉज उन्होंने नहीं बनाया, उनके लिए डिफिकल्ट है। हमारे लिए खुद ऐसा वापस बनाना
5: उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए, हो सकता है, बट हमारे लिए एटलीस्ट ये कि वो सिचुएशन ने हम लोग को शायद ऐसा सोचने और बनाने पर मजबूर किया। ब्रीफ ऐसा ही था कि ही वाज अ डॉक्टर को मतलब एंगर इश्यूज है, सो वो कैसे एंगस्ट दिखाएगा। इट वॉज ऑल अबाउट एंग्स, और वो प्यार में है, प्यार का गुस्सा उस प्यार में, उसको इतनी अंदर उलझन हो रही है कि वो कैसे दिखा सकता। तो वो एक सिचुएशन थी। महरम ऑल्सो हैड दैट सिचुएशन, ऐसी थी कि जिसमें वो था एंग्स्ट था, ही वॉज अ फादर ऑफ अ सन, और उसको अपने बच्चे को भी दिखाना था कि मैं टूटा नहीं और तू ना टूटना कभी लाइफ में, और ये मैं कैसे उसको शिक्षा दे सकता हूँ कि वो लाइफ में टूट जाए। सो ही वॉज फाइटिंग कॉन्स्टेंटली। वो अकेले जाके ट्रेन की साउंड में चीखता था, वो ट्रेन की, ताकि साउंड किसी को बाहर पता ही ना लगे। सो दैट्स द इमोशन, दैट्स द फीलिंग ही हैड। सो वो जब हम लोग ने अंदर डाली तो शायद दोबारा से वो महरम जैसा या कुछ ऐसा वी गुड हैव डन, बट बेख्याली वॉज बेख्याली।
0: इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो आपका हर दूसरा गाना इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर कॉम्पोजिशंस। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और मेरे साथ मिर्ची गिरफ्तार है द म्यूजिक Composer duo Sachet Tandon and Parampara Thakur, jinse baatein aage continue hongi, but in a while. Till then, you stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. Na vidba, burga.
1: Milchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी
2: हाँ जी बताइए
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
2: या ऑफ कोर्स
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मजे अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लासेस क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
2: हाँ आप ठीक ही कह रहे हो
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो मैं ध्यान रखता
3: हूँ ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन हा?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
3: वैसे क्या हुआ क्या था भाभी से यार आपकी बात क्या हो गई थी
2: अरे कुछ नहीं यार
3: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखों की आवाज है क्या हुआ क्या था
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की
3: अच्छा अच्छा
2: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
3: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
2: रेडियो
4: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुर्गा बना रहा था आपके
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप यही नहीं गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे टीएनसी supply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: वकरा बुखेर वालों, इस खुशखबरी पर तो हमारे लुकैमत कुनाफा बकलावा या यूं कह लो जो तुम्हारे मन में हो जलेबी खिलवा दो। खुशियों की बात आ गई है एंड विंटर्स यानी मौसम अच्छे होते ही हमारे लिए 3 नए पार्कों की सौगात आ गई है।
1: #974974 the most trending local news of the day.
0: मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पार्क्स डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल हमारे लिए 3 पार्क्स लेकर आए हैं जिसमें अल मशमूम, अल खुजामा एंड अल अराक के जो पार्क हैं वो हैं। लेकिन खास बात यह है कि 2 पार्क इसमें से आपको बुकेर में एक है और 2 वखरा में मिले हैं। हाँ जी, अल मशमूम अल खुजामा ये वखरा में है एंड अरक पार्क अल बुकेर में। मैप में बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये लोकेशन जो है वो लोगों तक पता लगी जाएगी। एंड तीनों पार्क अब वखरा बुकेर एरिया में हरियाली, लोगों के लिए और ऑप्शन और बहुत सारी फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं। यस, मोहम्मद इब्राहिम अल सादा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पार्क डिपार्टमेंट एट द मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि ये उस इलाके के लोगों के लिए एसेंशियल सर्विसेज के साथ बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के साथ वॉकिंग, जॉगिंग ट्रैक्स और बच्चों के खेलने वाला एरिया एंड रेस्ट रूम ये भी है। एंड तो और बड़ी बात यह है कि इन पार्क में गजब की ग्रीनरी है, हरियाली देखने को मिलेगी। सबसे बड़े पार्क की अगर बात की जाए तो वो है अल मशमूम पार्क 4,394 स्क्वायर मीटर्स में एंड अल खुजामा पार्क 3,284 स्क्वायर मीटर्स में और अल अरक पार्क जो बुकेर में है वो लगभग 4,000 स्क्वायर मीटर में। कुल मिलाकर बड़े बड़े पार्क एंड बड़े बड़े स्पॉट्स अब आने वाले टाइम में रमजान में यहाँ जाकर शाम को इफ्तारी का मजा ही अलग होगा। यही तो होता है हमारे पब्लिक पार्क का सबसे ज्यादा यूज हम पॉटलक पार्टीज के लिए ही कर रहे हैं जी। लेकिन वहाँ वॉक करने जाओ, जॉग करने जाओ, सेहत भी जरूरी है। 89.6 मिर्ची 1 बकरा वाले वालों, बुकेर वालों, बधाई हो, नया पार्क मिला है। मिर्ची थॉट।

शाम गुलाबी होगी और आपका दिमाग हरा हो जाएगा। मस्त मौला गौरव। अरे जब सुहानी को आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये पता लग जाएगा। द मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर। 25 सितंबर को QNCC में शाम 5 बजे से लगने वाली है सुहानी के इस मेंटल वाले बेहतरीन शो की महफिल, जहां पर वो माइंड रीड करेंगी, अपने इल्यूजन से ऐसा मैजिक क्रिएट करेंगे कि सब कुछ असल दुनिया का ही लगेगा। वेल, इसके लिए बस आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है एंड एस सिटी स्नूनू पर इस वक्त 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है, यानी कि आप गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर, VIP कैटेगरी, VVIP कैटेगरी की टिकट बुक भी कर रहे हो ना, तो भी याद रखो आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिलेगा। मौके का फायदा उठाओ एंड इस वीकेंड अपनी प्लानिंग सेट कर लो, क्योंकि ना सुहानी के साथ साथ डांस म्यूजिक डुओ का तड़का लगने वाला है, जहां पर सिंगर चरण एंड डांसर अशी हमारे कतर में आ रहे हैं एंड वो भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो एक तरफ जहां संगीत, म्यूजिक, डांस, दूसरी तरफ सुहानी का मेंटलिस्ट शो, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे 25th ऑफ सितंबर एट QNCC। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, प्रेजेंटेड बाय iPay। एंड ये कैसी शाम होगी जो हमें हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि कुछ अलग हटके आउट ऑफ बॉक्स सोचा मिर्ची ने। अब बस आप ना साथ दो, फटाफट टिकट्स बुक करो एंड मिर्ची को थैंक यू कहो जो हर समय कुछ ना कुछ आपके लिए करता ही रहता है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: खलबली गाना खत्म हुआ लेकिन मौसम अपनी खलबली लेके आ रहा है। बड़ी मिस्टी और फॉगी कंडीशन होने वाली है इस वीकेंड, सब लोग तैयार हो जाओ।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल सुहेल, स्टार की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर नीचे जाएगा लेकिन अगले 52 दिनों में, इसलिए अभी तो जबरदस्त वाली गर्मी की फीलिंग आनी है क्योंकि कतर मेट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है मिस्टी टू फॉगी कंडीशंस का, और ये इस वीकेंड पर आपको दिखेगी। पुअर हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी भी होगी, फ्राइडे सैटरडे काफी ज्यादा दिन में गर्म होने वाले हैं, हालांकि आसमानों में बादलों की आवाजाही, लेकिन ये किसी काम नहीं आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेम्परेचर रेंज करेगा 33 डिग्री सेल्सियस मिनिमम से 43 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तक। हवाओं की रफ्तार भी बीच में गायब रहेगी। घबराना नहीं है, पानी पी के सूरज चाचू को कोसना है। आखिरी चंद दिन और, जैसे इतने दिन काट लिए आगे हिम्मत दे ऊपर वाला, ये भी काट लेंगे और फिर तो अक्टूबर आ जाना है, फिर नवंबर से होते होते देखना दिसंबर में सब ठीक हो जाएगा, तो 3-4 महीनों की बस बात है दोस्तों। 89.6 पर आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 पहुंचा, जो आपकी गाड़ी में उससे ज्यादा लग रहा था, पर कोई नहीं, थोड़े दिन की और बात। पानी वानी पीते रहो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहो और मिर्ची सुनते रहो। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
2: Who's most likely to die to protect you? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
3: I have few people, yes. Yeah. I can say they're my friends, they're my family. Like at least two people that I know. I'm not naming them, but they know
2: who they are.
3: Two people. They will die for me. Yeah, I'm blessed. I'm blessed.
1: जीशु सेनगुप्ता उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, because I will also. Yeah. You're listening to Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
4: Only on Mirchi. It's hot.
5: Ready?
6: Ready.
5: To learn?
6: Yes.
5: To play?
6: Absolutely.
5: To grow?
6: With Maserati.
5: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
5: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
7: Har baar wahi regular recharge kyun? Apne hala number ke liye Orido ka your special offer paye. More value, made for your needs. Abhi Orido app par check karein ya kareebi retailer se milein. Experience more with Orido.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
10: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah.

0: सुबोध शर्मा की आवाज में वे जुनून खत्म हुआ और आपके साथ मसमोला गौरव मिर्ची घड़ी का टाइम 5:03
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: सुनो सुनो सुनो टैक्सी लिमोजीन बस चलाने वाले ड्राइवर भाइयों सुनो,
2: मस्त मौला गौरव।
0: अगली इम्पोर्टेंट अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आप ही के लिए है।
3: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, हम बता दें आपको कतर में वो सारे मोटरिस्ट जो कि टैक्सी चलाते हैं, लिमोजीन चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस चलाते हैं, उन्हें वैलिड पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस जो कि उनके लिए स्पेशली बना है, उन्हें ऑथराइज करता है इस तरह के व्हीकल चलाने के लिए, वो हासिल करने ही करने। यस, हम आपको बता दें कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप कतर में पब्लिक व्हीकल्स चला सकते हो, इसके लिए स्पेसिफिक ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, एटलीस्ट 21 ईयर्स एज होनी चाहिए, मेडिकली आपको फिट होना चाहिए और वैलिड मैकेनिकल व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 2 साल से होल्ड करना ज्यादा जरूरी है, यानी कि अगर पिछले 2 साल से आप मैकेनिकल व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो आप इनमें से कोई चीज ड्राइव कर सकते हो। साथ ही इसके अलावा गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, कतर के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो रेसिडेंस परमिट है उस पे ड्राइवर और इसके अलावा एप्लीकेबल केसेस में टैक्सी लिमोजिन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंडर फुल टाइम वर्क परमिट भी रिक्वायर्ड है। तो वो लोग जो सोच रहे हैं कि अपने पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है पार्ट टाइम वाला काम कर लेते हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसके लिए हेफ्टी फाइंस हैं। इसके फाइंस आपको 10,000 से 50,000 के बीच पड़ सकते हैं अगर आप इनमें से रिक्वायर्ड कोई भी सिग्निफिकेंट चीज को अपने पास नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, 1 month to 3 years ऑफ इंप्रिजनमेंट। इसके अलावा फाइन बिटवीन 10,000 to 50,000 कतरी रियाल और उसके बाद अगर दोबारा पकड़ाए तो 20,000 से 50,000 बीच के फाइन, एंड उसके बाद अगर फिर से गलती की कि चलो क्या ही होगा कोई नहीं पकड़ता तो भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। प्लीज इस बात को समझिए कि स्पेसिफिक ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है इफ यू आर ड्राइविंग लिमोजीन टैक्सीज या फिर पब्लिक बसेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर हमने बता दिया है, अब आप खुद ब खुद अपने सारे पेपर्स को सही कर लेंगे। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
1: वाली बातें कर रहा
2: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
5: ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman Heavy Duty Trucks and Boom Trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

ये गाना और मेरा वॉलेट दोनों एक जैसे ही हैं। एक से दस तारीख के बीच मेरा वॉलेट मुझसे नजरें बिल्कुल मिलाता रहता है, लेकिन जैसे ही दस तारीख ग्यारह तारीख बदलती है, ग्यारह से पंद्रह आता है, ये एकदम नजरें चुराना शुरू कर देता है। फिलहाल उदित नारायण अलका याग्निक आवाज में गाना खत्म हुआ और आ गया मस्त मौला गौरव। हालात बदलेंगे दोस्तों, बस तीन चार दिनों की बात है सैलरी आने वाली, लेकिन आपने बचा के रखे तो भेजो ना, रेट्स बता रहे हैं। राइट नाउ एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.20, 26 रुपए 20 पैसे भारतीय मुद्रा के, 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.12। अगर हम आपकी बात करें जनाब, पाकिस्तानी रुपीज वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.19 पाकिस्तानी रुपीज। नेपाल के लिए पहले तो बहुत सारी प्रेयर्स, उम्मीद है हम इस कठिन समय से जल्द बाहर आएंगे। फिलहाल हम नेपाल के लोगों के लिए एक साथ खड़े हैं। एंड इन सबके बीच एक कतरी रियाल के बदले अगर नेपाल रुपीज की बात की जाए, 41.76 का रेट है दाई। हाँ जी, 41.76 का रेट चौ वाहिनी। अगर घर भेजना है पैसा, एकदम सही टाइम है, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आप सबके परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, और जिन लोगों ने अपनों को खोया उन सबके लिए हम प्रेयर करें। इन सबके बीच बांधो बांग्लादेशी टाका दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.86 तो 33.86 बांग्लादेशी टाका का रेट। मस्त मौला गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

मिल गया मिल गया मिल गया, सारी मम्मियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। 89.6 मिर्ची पर मैं हूँ आरजे मस्तमौला गौरव, और स्कूल सीजन इज बैक। सब स्कूल जाने वाले हैं, बैक टू स्कूल के ऑफर्स चल रहे हैं, लेकिन मॉम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हाँ जी, ज्यादातर मॉम्स को यही लग रहा है कि अब लंच बॉक्स में क्या पैक करके देंगे जो बच्चों को टेस्टी भी लगेगा, न्यूट्रिशियस भी होगा, सुबह ब्रेकफास्ट में इनको क्या खिलाएंगे। ये बहुत बड़ी टेंशन सारी मॉम्स के बीच में रहती है कि यार क्या करें क्या ना करें। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपके घर में मिल्क, योगर्ट, चीज, लाबने और एग्स जैसे फ्रेश ऑप्शन अगर अवेलेबल हैं, तो फिर फिकर किस बात की है, आपकी आधी टेंशन तो ऐसी ही खत्म हो जाएगी। हां जी, क्योंकि मज़राटी के यही प्रोडक्ट्स अब आपकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन बनेंगे। मज़राटी लेकर आए हैं फ्रेश मिल्क, चीज, योगर्ट, लाबने, एग्स, और ये करेंगे आपके बच्चों के ब्रेकफास्ट से लेकर उनके लंच बॉक्स तक का सारा सॉल्यूशन। और आफ्टर स्कूल जब वो लौटेंगे तो उनके स्नैक्स के लिए भी आप मज़राटी के फ्रेश प्रोडक्ट्स को यूज कर सकती हैं, एंड उनकी लाइफ में न्यूट्रिशन के साथ साथ उनको डिलीशियस फ्लेवर भी दे सकती हैं। सो गो एंड ट्राई मज़राटी के ये सारे प्रोडक्ट्स जो आपको हर स्टोर पर मिल जाएंगे, एंड आपके बच्चे कहेंगे वाओ मम्मी सब कुछ सुपर टेस्टी बना है। वैसे मस्तमौला गौरव आपके साथ है तो बच्चों यही कहूंगा, बड़े ही लकी हो, हमारे दौर में जो मिल जाता था हम वो खा लेते थे, लेकिन आपकी मम्मी आपकी सारी रिक्वेस्ट को मानती है और खुद घर में मास्टर शेफ बन जाती है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: एजी द गैंगस्टर।
1: बच्चों अब तुम भी मुड़ के ना देखो, वेकेशन खत्म हो गए हैं। यूं कहें तो आखिरी चंद लम्हे आपकी छुट्टियों के हैं एंड संडे से बैक टू स्कूल हो जाएंगे आप। इतना लंबा वेकेशन कैसे बीत गया मुड़ मुड़ के देखने से कोई फायदा नहीं। एंड आई एम श्योर बैग पैक होने शुरू हो चुके हैं, नई बॉटल्स, नए बैग, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो पुराना होमवर्क जो मैम ने दिया था, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए, ये मेक श्योर करना। इसी उम्मीद के साथ कि आप एक बार फिर से स्कूल वापस जाओगे, मन लगाकर पढ़ोगे, मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें अच्छा करोगे एंड ये सेशन पूरा अच्छे से पढ़ाई कर निकल जाओगे और आगे अच्छे नंबर लाओगे। मस्मौला गौरव आप सबको कहता है ऑल द बेस्ट। एंड यस, अब से थोड़ी देर में आपसे मुलाकातें होंगी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था सबसे जंगल जोन में, जहां पर मिर्ची बैक टू स्कूल पार्टी चल रही है। फटाफट से पहुंचता है मस्मौला गौरव, बच्चों को थोड़ा एंजॉय कराता है, रिचार्ज करता है, ताकि वो स्कूल जाकर मन लगाकर अपने दोस्तों यारों के साथ मस्ती करें, धमाल करें और टाइम बचे तो पढ़ाई कर ले। 89.6 मिर्ची 1 टाटा बाय बाय, मिलेंगे सैटरडे की शाम शानदार में। तब तक ले हबीबी मां सलामा, मिर्ची हरारा कतीर, इट्स हॉट।

फैंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची रे।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है
2: भाई. जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था.
2: आपने सही कह रहा
3: है. हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना, नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा. हैव अ सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: Mirchi Murga, Naveed ke saath, only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय दियो
4: समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है, बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही है, सब बाल की खाल निकालने वाले ही है.
5: Continue what?
4: I mean, he's passed away, but my father, my God, anything that I do, anything that any script I said, but ऐसा क्यों? अरे भाई साहब फिल्म है. इमेजिन. नो बट व्हाई? एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एंड एक्टर हिमसेल्फ.
3: अभिनय दियो द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश दियो, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
6: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
7: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे.
8: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है.
11: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
1: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

स्माइल हो परफेक्ट सिर्फ नसीम डेंटल के साथ। विजिट करें मुंतजा या अजीजिया, योर ट्रस्टेड स्माइल पार्टनर। Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Restaurant Partner Chasu.

0: इंश्योरेंस इन कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

कहा जाएंगे आप। क्लब मिर्ची सुनते रहिए डीजे रिचर्ड मिर्ची और योमतिका आपके साथ। महबूब से ओम मंगलम, बेसिकली द एंटायर इंडियन रिलेशनशिप जर्नी, लव मैरिज ईएमआई।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया सीरियसली? कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है.
4: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
1: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: मिर्ची
1: हेलो पीपल, वी कैन फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्ची ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉनस्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: अरे सर मेरा बच्चा सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाता है, जवाब दे दे के थक गया हूँ मैं, क्या करूँ?
2: अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना तेरा बाप हूँ।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में रात के आठ की पारिंग विद क्लब मिर्ची
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड
4: क्लब मिर्ची.

Question number one, what's the plan? Question number two, how much is going to cost? Question number three, okay, we'll figure it out. यहाँ पे गाने फ्री है क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन टिका फॉर ऑल द जेंटलमैन एंड द लेडी लेट्स गो.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. Naviet wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात,
2: कौन
3: सुन,
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो देख, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
2: वाली बातें कर रहा
3: है क्या? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल अब जा।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: Mahendra Singh Dhoni के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

मतलब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ सैटरडेज फॉर फ्रेंड्स बिकॉज़ फ्रेंड्स आर द ओनली पीपल हु कैन से लेट्स जस्ट गो आउट फॉर एन आवर एंड समहाउ ब्रिंग यू होम आफ्टर 4 आवर्स सो करो यार दोस्तों से ही प्यार करो

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: सोनी राजदान, आलिया और शाहीन, इन दोनों में से हु इज मोस्ट लाइकली टू लिसन टू यू इवन टुडे?
4: डिफिकल्ट वन, स्प्लिट बिटवीन माय चिल्ड्रन.
5: सो बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट वेज, बट या दे आर रिसेप्टिव जनरली, बट आई थिंक आई मस्ट बी इरिटेटिंग देम अ लॉट बिकॉज़ आई गिव टू मच एडवाइस, दैट्स व्हाट दे टेल मी. सो क्या बोलूं आपको?
3: सोनी राजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया. आलिया या शाहीन, किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

सैटरडे रॉक करना तो बनता है. वेलकम बैक रॉकर्स क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंदिका एंड बॉम्बे रॉकर्स इन द हाउस. द सॉन्ग इज कॉल्ड रॉक द पार्टी.

किंग, जो भी हमारे साथ सिंग करते हैं वही क्लब मिर्ची के किंग बनते हैं। डीजे रिचर्डन मिर्ची ऑयोन देगा आपके साथ, बाकी बातें पीने बाद, बट पीने के बाद नो ड्राइविंग। क्लब मिर्ची।

गोंडा को तो बच के रहना ही पड़ेगा. Hotness just entered the club Mirchi party and that's DJ Richard Mirchi Oyondika. अगले गाने का नाम है सात समंदर. By the way, ये शो भी ब्रॉडकास्ट होता है सात समंदर. So longitude, latitude जो भी हो, frequency.

रेजी बीट पे नाचेगी एक साथ क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लैला भी नाचेगी टुनाइट। एवरीवन इज द मेन कैरेक्टर।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी
2: हाँ जी बताइए
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
2: या ऑफ कोर्स
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी

0: मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार। मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना। और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं। लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
0: नहीं मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
0: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
0: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
0: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन? हाँ
1: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
0: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
0: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेस की।
0: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
0: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
0: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे हैं,
0: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah,

नहीं नहीं नहीं लो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता यार. वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे मिचर मिर्ची और योन देगा. सैटरडे नाइट एनर्जी हाई, सो एंजॉय व्हाइल योर बैटरी लास्ट्स. लेट्स गिव इट ऑल.

चटन मिर्ची ओयों का पार्टी तो करवाएंगे, मैं हूँ ना, दैट्स ओयों का फॉर यू, गाने का नाम है तुमसे मिलके। हाँ हाँ, मुझसे मिलके आपको अच्छा ही लगेगा। हिट मी अप ऑन माय सोशल्स, इट्स AYANTIKA।

अरे कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा यार, रिचर्ड आपके लिए इंतजार कर रहा है ऑन हिज सोशल्स, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल। उनके म्यूजिक के नशे में ही तो आप झूमते हैं एवरी वीकेंड, सो गिव इट अप फॉर डी

अटेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो
2: कौन
3: हेलो विपिन
2: कौन बोल रहा है
3: इस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तू इतने धीरे के बोल रहा है.
3: मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी.

0: है, तुम निकलवा दो अगर सर्दी हो सके तो।
1: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
0: हाँ ठीक है ठीक है,
1: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
0: आपने एकदम सही कह रहे
1: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
0: नहीं बोलना नहीं बोलना।
1: भाई साहब एक बात बताऊं?
0: बताओ।
1: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो
0: क्या?
1: वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
0: मैं तो पागल है क्या?
1: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है आपसे।
1: मरवाओगे क्या, उठ जाएंगे।
0: सॉरी सॉरी सॉरी।
1: ठीक है चलो पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
0: ओके ओके
1: आई लव यू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ये पगला
5: मिर्ची वन इट्स हॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
6: मिर्ची

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Delhi Belly, Jalsa, Brown jaise content ke creator. मिस्टर अभिनय देओ
4: हु वाज मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
5: वेट
4: टेल
5: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट इज बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब film imagine no but why and he was a filmmaker an actor himself
3: Abhinay Deo the director is talking about his father Ramesh Deo one of the finest actors the Hindi and the Marathi cinema has seen aap sun rahe hain Mirchi it's hot
1: Bollywood Bordal Bollywood Bollywood Bollywood Bordal
2: only on Mirchi it's hot
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है
9: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
10: Ladies and gentlemen.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
2: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
1: मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ और योगा करते करते गैस निकल जाती है, मैं क्या करूँ?
2: गैस निकल जाती है हु? तो घर से निकले तो पहले ही नॉब चेक करके जाया कर।

एपिसोड की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता. सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर. डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विद यू. लेट्स गो.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है, टेंशन किस बात की? क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: भाई। आप ही रखो यार, आप रख लो।
2: अरे यार,
3: पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी, बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ संदीप जी,
3: अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो कह रहा है लोगो चेंज करा अपना डीडीए।

0: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम संगत में बनाया, ठीक है ना
0: हाँ?
1: भैया पैसे भाड़ में गए,
0: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसे ही टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो।
2: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snuno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

वादा किया था तो वापस तो आएंगे ही। क्लब मिर्ची वेलकम्स यू बैक, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंदी का एक साथ। तो चलो सुनते हैं गाना, गाने का नाम

साथ जाएंगे आप क्लब मिर्ची, सुनते रहिए डीजे रिचर्ड मिर्ची और योमतिका आपके साथ। महबूब से ओम मंगलम, बेसिकली द एंटायर इंडियन रिलेशनशिप जर्नी, लव मैरिज।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेन गुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
4: Who's most likely to die to protect you? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
5: I have few people, yes. Yeah. I can say they're my friends, they're my family. Like at least two people I know. I'm not naming them, but they know
4: who they are.
5: Two people, they will die for me. Yeah, I'm blessed. I'm blessed.
3: जीशु सेन गुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, because I will also. Yeah, you are listening to Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
6: Only on Mirchi. It's hot.
7: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है।
10: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCP Snowno. Tickets अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
11: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
2: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and wait for the no smoking sign. We are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

मिर्ची। हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्ची ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंदिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

what's the plan? Question number two, how much is going to cost? Question number three, okay, we'll figure it out. यहाँ पे गाने फ्री है क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन टिका फॉर ऑल द जेंटलमैन एंड द लेडी लेट्स गो.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला? तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: मैं फिर वही बात को लेकर आ गया।
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
2: वाली बातें कर रहा
3: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार।
4: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

लव मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ सैटरडेज फॉर फ्रेंड्स बिकॉज फ्रेंड्स आर द ओनली पीपल हु कैन से लेट्स जस्ट गो आउट फॉर एन आवर एंड समहाउ ब्रिंग यू होम आफ्टर फोर आवर्स सो करो यार दोस्तों से ही प्यार करो

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
4: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
3: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्ड, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

सैटरडे रॉक करना तो बनता है. वेलकम बैक रॉकर्स क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंदिका एंड बॉम्बे रॉकर्स इन द हाउस. द सॉन्ग इज कॉल्ड रॉक द पार्टी.

इज किंग। जो भी हमारे साथ सिंग करते हैं वही क्लब मिर्ची के किंग बनते हैं। डीजे रिचर्डन मिर्ची ऑयोन देगा आपके साथ, बाकी बातें पीने बाद, बट पीने के बाद नो ड्राइविंग। क्लब मिर्ची।

अब मुंडा को तो बच के रहना ही पड़ेगा. हॉटनेस जस्ट एंटर द क्लब मिर्ची पार्टी एंड दैट्स डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयल का. अगले गाने का नाम है सात समंदर. बाय द वे ये शो भी ब्रॉडकास्ट होता है सात समंदर, सो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो भी हो फ्रीक्वेंसी तो मिली.

अन्ना जी की एक साथ मतलब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका लैला भी नाचेगी टुनाइट एवरीवन इज द मेन कैरेक्टर

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: अरे सर मेरा बच्चा सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाता है, जवाब दे दे के थक गया हूँ मैं, क्या करूँ।
1: अरे तुम तो मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना तेरा बाप हूँ।
2: रख रख

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी
2: हाँ जी बताइए
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
2: या ऑफ कोर्स
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मज़े अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ये लेते हैं मज़े सारे मज़े लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
2: हाँ ठीक ही कह रहे हो
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
3: बिल्कुल पर
2: आप सही कह रहे हो मैं ध्यान रखना
3: थोड़ा ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
3: वैसे क्या हुआ क्या था भाभी से यार आपकी बात क्या हो गई थी
2: अरे कुछ नहीं यार
3: नहीं, फिर भी क्या मतलब काफी चीखों की आवाज है क्या हुआ क्या था
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की
3: अच्छा अच्छा
2: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
3: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
2: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत
3: आप कह रहे हो चिल्लाई चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
2: मजे आ रहे हैं
3: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
2: अरे तो मजा आ रहा है यार तू मजे ले रहा
4: फोन करके मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं मुर्गा बना रहा था आपके
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: 89.6
7: Ladies and gentlemen.

नहीं नहीं नहीं नहीं लो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता यार. वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे मिर्ची मिर्ची और यों देगा. सैटरडे नाइट एनर्जी हाई, सो एंजॉय व्हाइल योर बैटरी लास्ट्स. लेट्स गिव इट ऑल.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: सोनी रजदान, आलिया और शाहीन, इन दोनों में से हु इज मोस्ट लाइकली टू लिसन टू यू इवन टुडे?
4: डिफिकल्ट वन,
5: स्प्लिट बिटवीन माय चिल्ड्रन. सो बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट वेज, बट या दे आर रिसेप्टिव जनरली, बट आई थिंक आई मस्ट बी इरिटेटिंग देम अ लॉट बिकॉज़ आई गिव टू मच एडवाइस, दैट्स व्हाट यू टेल मी. सो क्या बोलूं आपको?
3: सोनी रजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया. आलिया या शाहीन, किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
11: on a ride.

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑय ओम टेका पार्टी तो करवाएंगे मैं हूँ ना दैट्स ऑय ओम टेका फॉर यू गाने का नाम है तुमसे मिलके हाँ हाँ मुझसे मिलके आपको अच्छा ही लगेगा हिट मी अप ऑन माय सोशल्स इट्स AYANTIKA

अरे कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा यार, रिचर्ड आपके लिए इंतजार कर रहा है ऑन हिज सोशल्स, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल। उनके म्यूजिक के नशे में ही तो आप झूमते हैं एवरी वीकेंड, सो गिव इट अप फॉर डीजे रिचर्ड।